0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि आपको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं, व्हेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हेट डॉग्स. आपने झूठ इसलिए बोला था ताकि गर्लफ्रेंड मान जाए, एंड यू एंड अप मेकिंग सम स्वीट टेंडर लव. हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सीक्रेट है दैट यू कांट डिस्कस विद एनीबॉडी एल्स, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी. यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर, एंड वी विल गेट टॉकिंग. फॉर नाउ मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
4: गुड गुड.
2: तो मिस्ट्री कॉलर, ये जो आप ऑलरेडी इतने सीक्रेटिव साउंड कर रहे हो, आपकी जिंदगी में सीक्रेट है क्या?
4: तो मतलब सीक्रेट क्या है, क्या बताऊं. एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी वांट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट.
2: ओके,
4: ठीक है ना. तो वो कुछ कोर्स कर रही है मेकअप रिलेटेड. तो शी गिफ्टेड मी डिओड्रेंट.
2: ओके,
4: लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे. तो मतलब इतना घटिया, उसकी स्मेल इतनी घटिया. मैं सोचता हूँ मैं क्या यूज करूँ उसको. तो अब मैं उसको एज अ टॉयलेट फ्रेशनर यूज करता हूँ. और इत्तेफाक से लास्ट वीकेंड वो मेरे घर आ गई.
2: हाँ,
4: मेरी गर्लफ्रेंड. हाँ. और उसने वो स्मेल कर लिया. तो उसने हाँ. बोला ये डिओड्रेंट महक रहा है ना. हाँ. तो मैंने कहा कि हाँ हाँ, वो तुम्हारी याद आ रही थी ना, तो इसी तरह से मैंने उसको यूज किया तुम्हारी याद में. तो मैं बस चाहता हूँ कि मैं उसको बोल पाऊँ कि मेकअप के कोर्स के साथ साथ एक डिओड्रेंट या परफ्यूम का कोर्स भी कर सकते.
2: You are so funny. I hope आपकी girlfriend ये सुन रही हो, but क्योंकि मैंने mystery caller कहा है, उसे मतलब बहुत कम chance है कि उसे idea होगा, but आपको थोड़ी सी जिंदगी में तसल्ली मिल जाए that things do change. आप एक गहरी सांस लो और मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? गहरी सांस तो ले लो जरा.
0: You've been roshified.
2: You poor thing, यार मुझे तो खराब लग रहा है. मतलब पहले तो आप बाथरूम में स्प्रे कर रहे हो वो गंदा सा डियो, और उसके बाद गर्लफ्रेंड टपक पड़ती है जब बाथरूम में वो डियो है. बट ऑल द बेस्ट विद योर रिलेशनशिप यार. थैंक यू सो मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, क्या सोच रहे हो, जल्दी से ढूंढो मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, काम है आपसे प्यार करना, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

I'm a dog. नहीं मिलेगा मुस्ता go find it. Don't angry me, mind it. अरे मेरे जैसे डांस किसको आता है? कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दूँ.

मुझे अपने भाई के बारे में पता है एक क्या चीज अच्छी लगती है, उसकी कंसिस्टेंसी, ईयर आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर. अब वो एक रिलेशनशिप में पिछले 3 साल से और तीनों साल अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल जाता है टिल द लास्ट वेरी मिनट, और एक दिन पहले एंड विदाउट फेल ये हर साल करता है. ही कम्स एंड आस्क मी क्या दूं मैं उसे, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ पर्सनलाइज देना चाहता हूं. आई वाज लाइक, अगर तू इतनी अटेंशन पे कर रहा होता उसके बर्थडे पे तो एक दिन पहले याद नहीं आता तुझे. बट क्योंकि मैं उसकी बहन हूं और मैं उसके प्यार के हाथों मजबूर हूं, इस साल आई टोल्ड हिम कि उसे एक उसके जोड़िया का पेंडेंट खरीद के दे दे. तो ही वाज लाइक, आई यू श्योर उसे पसंद आएगा? मैं आई वाज लाइक, देख एक चीज फॉर श्योर है, गर्ल्स लव ज्वेलरी, सो अ पेंडेंट इज वेल ज्वेलरी. और दूसरी चीज, गर्ल्स लव इट जब आप उनके जोडियाक साइन में घुस के उसके बारे में कुछ कहते हो या उसको उसके जोडियाक पर बेस्ड कोई गाना देते हो, या अगर उसके पेंडेंट में, नाउ दिस ज्वेलरी का पीस दैट शी एक्चुअली लाइक्स, उसमें उसी का जोडियाक साइन इनग्रेव्ड है, इट डज नॉट गेट बेटर देन दैट. सो दैट्स व्हाट ही इज डिसाइडेड टू गो विद. थोड़ी सी उसने मेहनत दिखाकर उस पेंडेंट के एज पे उसका नाम लिखवाया है और उसका बर्थ डेट लिखवाया है, वो सब लाइक दोज आर क्यूट लाइक एड ऑन्स. बट अगर आप भी मेरे भाई की तरह अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भूल गए हो, शर्म आनी चाहिए, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस, बट यू कैन गेट हर एनी काइंड ऑफ ज्वेलरी जिसमें उसका जोडियाक साइन एम्बॉस्ड है. शी इज गोना लव यू फॉर दिस एंड यू कैन थैंक मी फॉर दिस सजेशन ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. एंड रियली आई समटाइम्स वंडर कब सुधरोगे यार आप. ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: Oh, aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup hoy kus kus kus kus kus oh ve khabon ki nadi mein khaye gote gud gud gud gud gud gud hoy bud bud bud bud bud oh ve aankhon hi aankhon mein kar baatein gup chup gup chup gup chup hoy kus kus kus kus kus oh ve खाबों की नदी में खाए गोते गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ गुड़ ओए गुड़ गुड़ गुड़ गुड़

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर हम फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं तो वो ऐसे ग्रंपी क्यों हो जाता है जब मैं दूसरे बंदों के साथ फ्लर्ट करती हूँ यार।
0: रोशी के डीएम से
2: रितिका का मुझे मैसेज आया एंड दिस इज द क्वेश्चन दैट शी इज आस्किंग मी कि मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त के साथ फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हूँ फॉर द लास्ट 3 months, लेकिन अब सडनली पता नहीं उसे क्या हो गया है, जब भी मैं किसी और बंदे के साथ फ्लर्ट करती हूँ, जनरली हम एक रेस्टोरेंट में या जो भी है, ही गेट्स वेरी अपसेट। जब मैं व्हाट्सएप पे किसी के साथ फ्लर्ट कर रही होती हूँ तब वो अपसेट हो जाता है, और जब हम इसके बारे में आर्ग्यू करना शुरू करते हैं भाई वो अपनी आवाज ऊंची कर लेता है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। और अब वो सडनली मुझे ज्यादा फोन भी करने लग गया है। रिधिमा, इट्स काइंड ऑफ क्लियर नहीं आपको लगता दैट ही इज एक्चुअली गॉट फीलिंग्स फॉर यू, एंड आई वोंट बी सरप्राइज अगर धीरे धीरे वो आपके लिए प्रेजेंस भी लाने लग गया है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी एविडेंट दैट योर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स इज नो लॉन्गर जस्ट योर फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, उसे आपके लिए इमोशंस हो गए हैं। गुड न्यूज। तो अगर हो सके तो हैव अ कॉन्वर्सेशन विद हिम अबाउट इट, और अगर उसे नहीं समझ में आता या ही इज इन डिनायल, देन ट्राई एंड मेंटेन a little bit of distance for a little while, ताकि उसकी जो भी feelings हैं वो settle down हो जाएं, और उसके बाद you can either resume it or cut short this friends with benefits. अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही शुरू तो relationship बहुत ही आसानी से प्यार से मीठा मीठा हुआ था, और अब suddenly it's become this major conundrum और आपको समझ नहीं आ रहा उसके बारे में क्या करना है, why don't you just hit me up and we'll get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE, so do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Gabana. Burka, burka. Na vietvala burka. Milci, burka.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं
3: सर? मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है। मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में मैंने स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर, ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज़, उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश कर रहा हूँ, मन डोले मेरा, मन डोले मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया।
2: क्या
3: सर? मत सर, बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा?
2: सुन ले बात,
3: मेरी बात
2: सुन, पहले बात सुन।
3: हाँ सर,
2: और बंद करिए, बीन बीन जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है सर, बोलिए।
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

0: Lead के साथ only on Mirchi. It's hot.
1: Yep, attack.
0: Breaking news. Mirchi पर आने वाला है हिट गाना.
2: हिट गाना.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अगर आप जिंदगी के साथ जूझ रहे हो, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, समथिंग कुड एक्चुअली हेल्प यू एंड समथिंग जिसके बारे में आपने सोचा नहीं होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप्स. इमेजिन अगर आप चाणक्य नीति अप्लाई करें टू योर रिलेशनशिप्स. साउंड्स फनी बट इट इज ट्रू. मेरे साथ हैं ऑन द मिर्ची हॉटलाइन अभिराज गुप्ता, हु इज द ऑथर ऑफ द चाणक्य प्ले बुक. वेलकम टू द मिर्ची हॉटलाइन. अभिराज, मेरा आपसे ना एक सवाल है. मैं ये जानना चाहती हूँ हाइपोथेटिकली, अगर चाणक्य होते इन द डेटिंग सीन इन 2026, ठीक है, तो वो 2026 में डेट करने के बाद और चाणक्य नीति लिखने के बाद क्या एक पीस ऑफ एडवाइस देते टू अदर कपल्स हु वर हिज फ्रेंड्स और व्हाटएवर?
3: आई थिंक फर्स्ट थिंग चाणक्य वुड प्रोबब्ली हैव वुड हैव नोटिस वुड बी कि आजकल ना हम सारे अपना गुड और अपनी पोटेंशियल मार्केट करते हैं. यू नो, लाइक ऑब्वियसली अगर आपकी कोई लड़ाई हुई या कुछ हुई तो आप इंस्टाग्राम पे वो सुनने डालोगे. यू नो, वी जस्ट पोर्ट्रे द बेस्ट सेल्स. नो वन इज पोर्ट्रेइंग द ट्रू सेल्स. सो चाणक्य वुड प्रोबब्ली वुड से के यू नो, डेट डोंट डेट पोटेंशियल, डेट रियलिटी. एंड ही वुड प्रोबब्ली जस्ट से के देखिए, डेट समवन और who's equal to you or is better, because उससे आप पे improvement का scope हमेशा बढ़ता रहेगा.
2: That's actually so cool. मैंने ये सोचा नहीं था, मतलब in so many simple words, कि अपने या तो अपने जैसा कोई डेट करो या अपने से बेहतर, who will inspire you to get better as well.
3: Better is better, like better would have been better, but अगर वो नहीं मिलता तो अपने जैसा.
2: That is actually a very cool piece of advice. Thank you so much for sharing that advice with me. चाणक्य नहीं है तो

0: हुआ, आप यहाँ पर हो, इट प्रेटी मच मेक्स अप फॉर इज लैक.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसे ही यू हैव अ क्वेश्चन टू आस्क अबाउट चाणक्य नीति फॉर योर जॉब और फॉर योर लव लाइफ, फाइंड द चाणक्य प्ले बुक एट अ बुक स्टोर नियर यू, फाइंड इट ऑनलाइन. एंड अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, देन हिट मी अप ऑन इंस्टा या FB, वी विल गेट टॉकिंग. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड एंड डू व्हाटएवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

अगर आपको लग रहा है दैट यू गेटिंग नॉटी विद योर पार्टनर इज द किंकीएस्ट कूलेस्ट थिंग दैट एवर हैपेंड दिस साइड गूगल मैप्स, आई थिंक आपको फिर सोचना पड़ेगा इसके बारे में, क्योंकि क्या आपको पता है, एंड लाइक माई माइंड वॉज ब्लोन जब मैं ये रिसर्च के बारे में पढ़ रही थी. जो ग्रीन एनाकोंडा होता है वो एनाकोंडा का एक स्पेसिफिक स्पीशीज होता है. उसमें क्या होता है, देर इज समथिंग कॉल्ड अ ब्रीडिंग बॉल. तो वेन द फीमेल ऑफ द स्पीशीज डिसाइड्स कि यार अब मुझे मेट करके बच्चे करने हैं, तो वो कई बार 10-10 मेल एनाकोंडास एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं एंड दे मेक दिस बॉल ओके ऑफ अ लॉट ऑफ स्नेक्स. और जब ऐसा होता है तो 4 हफ्ते तक एवरीवन इज गेटिंग नॉटी इन दैट ब्रीडिंग बॉल. और जब ये नॉटीनेस के बाद वो फाइनली ग्रीन एनाकोंडा हैज डिसाइडेड कि अब यू नो आई एम एक्चुअली गोइंग टू हैव अ बन इन माय ओवन, यानी कि अब एक बेबी बनने वाला है. अब ये 4 हफ्ते में उस ग्रीन एनाकोंडा को काफी भूख लग गई होती है, तो अपनी भूख मिटाने के लिए वो ग्रीन एनाकोंडा क्या करती है, शी डजंट हैव टू लुक वेरी फार. वो जो 10 बाकी के सांप होते हैं जिनके साथ शी इज गेटिंग नॉटी बिकॉज शी इज पॉलीएंड्रस क्वाइट लाइक अ लॉट ऑफ यू, वो उन 10 सांपों में से 2-3 को खा जाती है. दैट्स इट. इतना न्यूट्रिशन मिलता है उसको अपने बच्चों के बाप को खाने में. दिस इज सो वियर्ड. अगर आपने भी कोई ऐसी वियर्ड एनिमल मेटिंग स्टोरी सुनी है एंड यू वांट टू शेयर देम विद मी मॉर्निंग ग्लोरी, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पे या FB पे, बिकॉज ऑनेस्टली फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आपका पार्टनर इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, इतना एक्साइटिंग भी नहीं है, बट यू गाइज गेट रियली ऑसम नॉटी इन बेड. नाउ इमेजिन करो कि उसी पार्टनर के साथ यू आर गेटिंग नॉटी एंड देन यू किल दैट पार्टनर. अगर आप रियल लाइफ में ऐसा करोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन मदर नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल अलाउड. आपको पता है ब्लैक विडो स्पाइडर्स जो होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्री मैं कल देख रही थी, वो आई मीन दे आर ह्यूज, ओके, एंड डैम गॉर्जियस इफ यू आर नॉट स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स. तो उसमें जो फीमेल स्पीशीज होती है वो अपने मेल पार्टनर को ढूंढती है, उसके बाद दे गेट नॉटी, दे हैव अ लॉट ऑफ एक्साइटिंग नॉटी नॉटी स्टफ गोइंग ऑन. उसके बाद ब्लैक विडो फीमेल स्पाइडर ब्लैक मेल स्पाइडर को मार डालती है, बिकॉज शी इज लाइक, मेरा काम खत्म हो गया यार, मेरे को तेरे साथ जो भी काम था वो अब हो गया, अब तू मेरे किसी काम का नहीं है, ये ले मर. आई मीन इमेजिन इफ दैट हैपेंड इन ह्यूमन बीइंग्स, जस्ट उसे इमेजिन करना इज सो फनी. अगर आपने अपने पार्टनर के बारे में अभी एग्जैक्टली यही सोचा है, देन आई टोटली वॉन्ट टू हियर योर स्टोरी मॉर्निंग ग्लोरी एंड टू टेल मी अबाउट दैट. वाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो गो अहेड बेबी, डू व्हाट यू आर सो गुड एट डूइंग, प्लीज डोंट किल योर पार्टनर एंड वट एवर यू डू, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirci, burga.
2: हेलो
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड, चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है.
3: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ.
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना आपने कुत्ते का इलाज.
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं बदतमीजी
3: नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ोबी शराब, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ू.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: ये पकड़ा.

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: अपनी गर्लफ्रेंड से झूठ बोला कि आपको कुत्ते बहुत अच्छे लगते हैं व्हेन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज यू हेट डॉग्स. आपने झूठ इसलिए बोला था ताकि गर्लफ्रेंड मान जाए एंड यू एंड अप मेकिंग सम स्वीट टेंडर लव. हाँ,
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सीक्रेट है दैट यू कान डिस्कस विद एनीबॉडी एल्स, मैं हूं ना आपकी ब्रोशी, नाम है मिर्ची रोशी. यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या एफपी पर एंड वी विल गेट टॉकिंग. फॉर नाउ मेरे साथ लाइन पर है मेरे मिस्ट्री कॉलर. हेलो मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय रोशी,
2: हाउ आर यू मिस्ट्री कॉलर?
4: गुड गुड.
2: तो मिस्ट्री कॉलर, ये जो आप ऑलरेडी इतने सीक्रेटिव साउंड कर रहे हो, आपकी जिंदगी में सीक्रेट है क्या?
4: तो मतलब सीक्रेट क्या, मैं क्या बताऊं. एक्चुअली मेरी गर्लफ्रेंड है एंड शी वांट्स टू बी अ मेकअप आर्टिस्ट.
2: ओके,
4: ठीक है ना. तो वो कुछ कोर्स कर रही है मेकअप रिलेटेड. तो शी गिफ्टेड मी डिओड्रेंट.
2: ओके,
4: लास्ट टाइम मेरे बर्थडे पे. तो मतलब इतना घटिया, उसकी स्मेल इतनी घटिया. मैं सोचता हूँ मैं क्या यूज करूँ उसको. तो अब मैं उसको एज अ टॉयलेट फ्रेशनर यूज करता हूँ. और इत्तेफाक से लास्ट वीकेंड वो मेरे घर आ गई.
2: हाँ,
4: मेरी गर्लफ्रेंड.
2: हाँ.
4: और उसने वो स्मेल कर लिया. तो उसने हाँ. बोला ये डिओड्रेंट महक रहा है ना. हाँ. तो मैंने कहा कि हाँ हाँ, वो तुम्हारी याद आ रही थी ना, तो इस तरह से मैंने उसको यूज किया तुम्हारी याद में.
2: ओह माय गॉड.
4: तो मैं बस

0: चाहता हूँ कि मैं उसको बोल पाऊँ कि मेकअप के कोर्स के साथ साथ एक डिओड्रेंट या परफ्यूम का कोर्स भी कर सकते।
1: You are so funny. I hope आपकी girlfriend ये सुन रही हो, but क्योंकि मैंने mystery caller कहा है, उसे मतलब बहुत कम chance है कि उसे idea होगा, but आपको थोड़ी सी जिंदगी में तसल्ली मिल जाए that things do change. आप एक गहरी सांस लो और मैं आपको रोशिफाई कर देती हूँ, ठीक है? गहरी सांस तो ले लो जरा.
2: You've been roshified.
1: You poor thing, यार मुझे तो खराब लग रहा है. मतलब पहले तो आप बाथरूम में स्प्रे करे हो वो गंदा सा डियो और उसके बाद गर्लफ्रेंड टपक पड़ती है जब बाथरूम में वो डियो है. बट ऑल द बेस्ट विद योर रिलेशनशिप यार. थैंक यू सो मच मिस्ट्री कॉलर. और अगर आपकी भी जिंदगी में ऐसी ही कोई सीक्रेट कन्फेशन है, क्या सोच रहे हो, जल्दी से ढूंढो मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी. काम है आपसे प्यार करना. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो डू व्हाट यू नीड टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.
3: Yeah, the meat bros, just how-

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कभी कभी एक फिल्म खत्म होने के बाद भी वो खत्म नहीं होती। धुरंधर और धुरंधर 2 एग्जैक्टली वैसी ही फिल्म्स निकली। सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस नहीं, कल्चरल टेक ओवर किया, मीम्स आए, फैन एडिट्स आए, एक्शन सीन्स वायरल हुए। लेकिन सबसे डेंजरस चीज पता है क्या हुई? डायलॉग्स जो है वो हमारे दिलो दिमाग में घुस गए। और ऑनेस्टली बॉलीवुड को इसकी सख्त जरूरत है, क्योंकि आजकल हम देखो फिल्म्स देखते तो बहुत हैं, लेकिन याद हमें बहुत कम रहती हैं। क्योंकि एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता था, रोजमर्रा की भाषा हुआ करती थी। कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, तुमसे ना हो पाएगा। ये लाइन से स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थी, ये इंडिया का पॉप कल्चर सॉफ्टवेयर थी। लेकिन आज 1000 करोड़ की फिल्में आ रही हैं, लेकिन थिएटर से बाहर निकलते ही आधे से ज्यादा डायलॉग्स मेमोरी से लॉग आउट कर जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो फिल्म्स रियलिज्म में इतनी धीमी हो गई हैं कि कोई लाइन हवा नहीं पकड़ती, या फिर हर दूसरा डायलॉग एक मास मोमेंट बनने की इतनी कोशिश करता है कि असली स्वैग गायब हो जाता है। आइकॉनिक डायलॉग्स लिखे नहीं जाते यार, वो फील होते हैं। और धुरंधर ने हमें याद दिलाया कि बॉलीवुड जब डायलॉग बाजी सही करता है ना, तो ऑडियंस सिर्फ तालियां नहीं बजाती, वो डायलॉग्स घर ले जाती है। इस हफ्ते का कारण नंबर 4 इज ऑल्सो अ धुरंधर। नंबर 4।

लेकिन अब एक स्पेशल गाना, एक ऐसी फिल्म से जिसके डायलॉग्स लिटरली इंडियन पॉप कल्चर की परमानेंट प्रॉपर्टी बन चुके हैं। फ्रॉम जब वी मेट, कोई डाउट मत रखना दिल में, सिखनी है ये भडिंडा की।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। नंबर 3।
2: वाह,

रूही दसदा ने सिर्फ चार्ट्स क्लाइम नहीं किए, ऑनेस्टली उसने अक्षय कुमार के बॉक्स ऑफिस कॉन्फिडेंस को CPR दे दिया है। लेकिन इस वक्त बॉलीवुड का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर कॉन्वर्सेशंस थिएटर्स में नहीं, टेलीग्राम ग्रुप्स में चल रहा है। धुरंधर 2 द रिवेंज द सेकंड पार्ट, बेसिकली इंडिया में इसके OTT रिलीज का वेट इतना इंटेंस था ना कि लोग लिटरली काउंट डाउन कर रहे थे। प्रॉब्लम ये थी कि फिल्म पहले एक प्लेटफॉर्म पे आनी थी और फिर 2 हफ्ते बाद दूसरे प्लेटफॉर्म पे आनी थी, और इन दोनों OTT प्लेटफॉर्म्स के सब्सक्रिप्शंस भाई EMI लगने लगे थे। और फिर बीच में मेकर्स ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, फिल्म को इंटरनेशनली रिलीज कर दिया 14 मई को। बस गेम ओवर, क्योंकि बॉलीवुड अभी तक ये बात समझ नहीं पाया है कि इंटरनेट को ज्योग्राफी समझ नहीं आती। अगर आपकी फिल्म दुनिया के किसी भी कोने में अगर एक बार किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आ गई तो 2 घंटे में वो पायरेटेड वेबसाइट्स पर भी आ जाती है, और वो भी कोई 240 पिक्सल, वो सिनेमा हॉल वाला प्रिंट वाली क्वालिटी नहीं, जिसमें बीच में किसी की परछाई नजर आती है, पिक्चर हिल रही होती है या साउंड बिल्कुल बकवास होता है। आई एम टॉकिंग ऑफ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर 4K फाइल। अब तो सोशल मीडिया पे लोग रिव्यूज से ज्यादा लिंक्स एक्सचेंज कर रहे हैं। पहले लोग पूछते थे कि भाई स्टोरी कैसी है, अब लोग पूछ रहे हैं भाई लिंक है क्या तेरे पास। और ये बहुत ही डेंजरस साइन है, क्योंकि एक वक्त था जब पायरेसी कन्वीनियंस की वजह से होती थी, आज पायरेसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो रही है। ऑडियंस फिल्म देखना तो चाहती है, इनफैक्ट इमीडिएटली देखना चाहती है, लेकिन अफोर्डेबल तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब फिल्म देखने के लिए एक आदमी को 3 apps, 4 passwords, 5 subscriptions और 15-20 ad से गुजरना पड़ता है। और इसीलिए पायरेसी फिर से एक डरावना कमबैक कर रही है। और आयरनी देखो ना, जिस फिल्म को लोग इलीगली हंट कर रहे हैं, उसी फिल्म का गाना 14 हफ्तों से इंडिया का नंबर 1 गाना बना हुआ है, फ्रॉम धुरंधर शरारत। और ये शरारत सच में महंगी पड़ गई। नंबर 1।

0: The Mania is still on, but Shararat बाकी गानों से ज्यादा पॉपुलर निकलेगा ये कभी नहीं सोचा था। एक और टाइटल ट्रैक है इश्क चला कर है, गहरा हुआ आरी आरी, इनको सुन के लगा था कि ये शायद आगे निकल जाएंगे, बट नो, शरारत इट इज। बढ़े या मेरी थोड़ी ना चलती है, इट इज यू एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम मिर्ची टॉक 20 के एक नए एपिसोड के साथ। अंटिल देन सरेन ओवर एंड आउट।
1: के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: और फिर क्या होगा?
1: पार्टियां, दावतें,

कई बार मुझे समझ नहीं आता कि पुरानी फिल्मों के नाम किस बेसिस पे रखे जाते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जिनका फिल्म के पूरे सब्जेक्ट से, पूरी फिल्म से ऐसे कोई खास तालमेल नहीं है। जैसे आपकी कसम मूवी, तो इस फिल्म में राजेश खन्ना एक शक्की हस्बैंड प्ले करते हैं जो अपनी वाइफ मुमताज पे शक करते हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ, लव लाइफ पूरी ऐसे तबाह कर लेते हैं। अभी इसमें आपकी कसम का क्या मतलब है टाइटल का, है ना? शक्की पति, ऐसे ऐसा नाम ज्यादा सूट करता है इस फिल्म को। खैर जो भी है, आपकी कसम गाना बहुत अच्छा है। ये पुरानी जीन्स पर सुन लेते हैं, मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Murga, murga. Nabhid wala murga. Mirchi murga.
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है, मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
3: फेवर,
4: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले।
4: शिवानी,
3: हेलो,
4: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी शिवानी शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो, शिवानी मेरी बात सुनो,
3: नहीं
4: नहीं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
6: इट पटक।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

जल भुन के खाक हो गए थे ऋषि कपूर और काफी इनसिक्योर भी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई सागर फिल्म को ऐसी बहुत बड़ी फिल्म माना जा रहा था, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया के साथ वापस आ रहे हैं, बॉबी का सक्सेस रिपीट होगा, ये वो फलाना डिमका, दोनों साथ में आए, लेकिन फिल्म की सारी लाइमलाइट कमल हासन साहब ले गए। और कमल हासन साहब और डिंपल कपाड़िया का जो उसमें सॉर्ट ऑफ दोस्ती रिश्ता दिखाया गया था उसको ज्यादा पसंद किया गया। और तो और इस फिल्म के लिए डिंपल कपाड़िया को बेस्ट एक्ट्रेस का और कमल हासन को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया, विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड ऋषि कपूर, विच इज एक्चुअली नेचुरल ऑल्सो यार, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोफेशन और लाइफ होता है। आप अपने साथ वालों के लिए खुश होते हो लेकिन अपने लिए भी दुखी हो जाते हो जीवन में। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना,
0: हिट

0: लिरिसिस्ट गुलशन बावरा ने पुराने टाइम के और लिरिसिस्ट के कंपैरिजन में गाने थोड़े कम लिखे हैं, लेकिन जो लिखे हैं क्या लिखे हैं? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक बार उनसे उनके फेवरेट गाने के बारे में पूछा गया, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि मेरा सबसे पसंदीदा कौन सा गाना है, लेकिन मुझे एक गाने का जरा वो जो मेरे दिल पे चोट लगी थी और जो मैंने लिखा था वो मुझे काफी अच्छा लगता है। वो है चांदी की दीवार न तोड़ी, प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ा। वैसे तो मेरे देश की धरती सोना उगले वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, इन दोनों गानों पे मुझे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले, लेकिन वो गाना मुझे कुछ चांदी की दीवार न तोड़ी दिल को थोड़ा सा।
0: वेल, ये तो हुई इनके फेवरेट गाने की बात, लेकिन यहाँ पे हम सुनेंगे एक गाना जो पता नहीं कितने लोगों का, शायद पूरी जेनरेशन का फेवरेट गाना है, क्योंकि इसके इतने कवर वर्जन्स बन चुके हैं, इसके रीमेक्स रीमिक्सेस बन चुके हैं। मुझे तो ये गाना बहुत पसंद है, आई एम श्योर आपको भी पसंद है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: दीवाना,
2: एक दीवाना शहर में,
1: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
2: दो दीवाने शहर में।

बचपन में ऐसे लगता था इस गाने में बोल रहे हैं कि आशियाना ढूंढते हैं, साबुदाना ढूंढते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। बड़े ओके समझ में आया आबुदाना का मतलब, इस गाने में भी, रियल लाइफ में भी। खाना पीना, रोजी रोटी, और जो रोजी रोटी कमाने के चक्कर में अपने घरों से दूर रह रहे हैं, अकेले भी रह रहे हैं, वो कुछ लाइन्स से बहुत रिलेट करेंगे। ये लाइन्स शहपर रसूल नाम के शायर हैं, इन्होंने लिखी हैं। कोई साया न कोई हम साया, कोई साया न कोई हम साया, आबोदाना ये किस जगह लाया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1981 की फिल्म कुदरत 1979 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले होती गई, जैसे प्रोड्यूसर B.S. खन्ना, डायरेक्टर चेतन आनंद और एक्टर राजेश खन्ना के बीच में काफी डिफरेंसेस प्रॉब्लम्स आ रही थी। राजेश खन्ना बाय देन हैड स्टार्टेड थ्रोइंग अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स। एक चीज जो सुनने में आती है कि इस फिल्म में मेन लीड में राजेश खन्ना, हेमा मालिनी थे, साथ में राजकुमार, प्रिया राजवंश एंड विनोद खन्ना भी थे। और विनोद खन्ना की कुर्बानी फिल्म जब रिलीज हुई तो वो बहुत पॉपुलर हो गए। उनकी इस पॉपुलैरिटी से राजेश खन्ना थोड़े से इनसिक्योर हो गए और कुदरत फिल्म के पोस्टर्स जो लगे थे, उनकी जो भी प्रमोशन हो रही थी, उससे उन्होंने विनोद खन्ना की फोटोज जो हैं वो हटवा दी। ऐसा सब सुनने में आता है, और भी बड़ा कुछ हुआ था। करते रहेंगे बातें, लेकिन अभी बातों पे ब्रेक, पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, सुनते रहिए मिर्ची

0: Hello.
1: Hello, Mr. Gotham.
0: Good morning.
1: Sir, मैं actually आज से बहुत request करना चाहूँ. मैं तो आप सुना है फिर वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ

0: सकते हैं कि भैया आजा तू आजा स्नेक निकाल दे सर, मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। सर नागिन क्या है सर, नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ कुछ
0: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको।
0: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
1: कौन से गाने
0: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ, तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
1: सुन ले बात मेरी,
0: बात
1: सुन पहले बात।
0: हाँ सर,
1: और इसे बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
0: है। सर बोलिए,
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
0: जी सर।
1: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

1969 की फिल्म तुमसे अच्छा कौन है हिट हो गई थी बिकॉज इसमें हीरो हीरोइन की कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज थी। एक तरफ जहां शम्मी कपूर साहब का पागलपन था, वहीं बबीता कपूर का पॉइज ग्रेस। वैसे बबीता कपूर ने एक्चुअली अपने देवर ससुर के साथ इस फिल्म में काम किया, अंकल इन लॉ क्या बोलेंगे। खैर रणधीर कपूर से तो उनकी शादी बाद में हुई थी। कमिंग बैक टू तुमसे अच्छा कौन है मूवी, सो शम्मी कपूर का पागलपन एंड बबीता की ग्रेस। ऐसा सुनने में आता है कि बबीता जी को बहुत ज्यादा ऐसे मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत ज्यादा रिहर्सल करनी पड़ी थी टू मैच अप विद शम्मी कपूर की एनर्जी। फिल्म भी हिट हुई थी और इसके गाने भी पॉपुलर हुए थे, खास करके ये वाला जो हम सुनने वाले हैं। पुराने जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

Purani Jeans with Charu, only on Mirchi. ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई वैसे तो अनुराधा पौडवाल 90s की प्रोमिनेंट सिंगर रही हैं, लेकिन इनकी शुरुआत 70s में ही हो गई थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक इंटरव्यू में इस बिगनिंग के बारे में सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैंने शुरू किया 1973 से फिल्म अभिमान से। अभिमान का उस वक्त बैकग्राउंड चल रहा था एंड बरमिंदा दा वांटेड अ श्लोक, सो ही टोल्ड माय हस्बैंड अरुण जी जो ही वाज असिस्टेंट डायरेक्टर टू बरमिंदा कि मुझे कोई संस्कृत का श्लोक चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने ये ट्यून किया है तो इसे थोड़ा घर के टेप रिकॉर्डर के ऊपर तुम थोड़ा गा दो। जैसे वो लेके गए बरमिंदा के पास तो उन्होंने पूछा है किसने गाया है, एंड देन ही सेड कि व्हाई डोंट वी रिकॉर्ड दिस, इन्हीं की आवाज में हम श्लोक रिकॉर्ड करते। सो दैट टर्नड आउट टू बी मतलब प्योर डेस्टिनी एंड That turned out to be the beginning of my career.
0: और actually 70s में उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में गाने गाए, कुछ बहुत हिट फिल्मों में भी गाने गाए, लेकिन उनके गाए गाने उतने हिट नहीं हुए। उनके करियर का पहला हिट गाना आया 80s में। अजीब बहन और भाइयों, उस साल का बेहद लोकप्रिय गीत जो 1984 की गीत माला में पायदान नंबर एक पर था। फिल्म का नाम हीरो, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने इसे सुरों से सजाया, आनंद बख्शी के बोल और आवाज मनहर और अनुराधा की। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स ऑन मिर्ची।

एक थप्पड़ की गूंज सुनी थी अमिताभ बच्चन साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म थी 1978 की कस्में वादे, जिसमें अमिताभ बच्चन और राखी का एक सीन था। सीन में ऐसा कुछ होता है कि राखी जी को अमिताभ बच्चन को थप्पड़ मारना होता है, तो अमिताभ बच्चन थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको ऐसा लगा कुछ टाइमिंग गड़बड़ हो गया, जैसे उनको लगा कि तीन डायलॉग के बाद थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन वो थप्पड़ दो डायलॉग के बाद ही पड़ गया। तो राखी जी ने एक बार एक इंटरव्यू में ऐसा शेयर किया था कि वो जो एक्सप्रेशन है उस फिल्म में थप्पड़ पड़ने के बाद वाला, अमिताभ का जो एक्सप्रेशन है एकदम हैरानी वाला, वो रियल है, बिकॉज उस टाइम वो थप्पड़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: भाई ये बड़े बड़े सिंगर्स जो इतने बढ़िया बढ़िया गाने गाते थे, इनको कितनी मुश्किल आती होगी कई बार सोचते हुए कि कौन सा गाना इनका फेवरेट है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हो सकता है कोई ऐसा गाना हो जिससे उन्होंने पर्सनली रिलेट किया हो, जो उनका फेवरेट बन गया हो। जैसे लता मंगेशकर जी ने कई इंटरव्यूज में अपने फेवरेट गाने शेयर किए हैं, आएगा आने वाला महल फिल्म से, या प्यार किया तो डरना क्या मुगले आजम से, लग जा गले वो कौन थी फिल्म का। और एक और उनका फेवरेट गाना था जो वो अपने हर लाइव शो में, म्यूजिक टूर में गाती थी, अनामिका फिल्म का ये गाना। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।
1: हाँ।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो।
4: हाय शिवानी।
3: हाय।
4: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
3: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
4: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
3: समाचार?
4: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
3: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
4: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
3: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
4: अच्छा।
3: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
4: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा, मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
3: आपको लेनी है क्या?
4: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं है, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
3: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
4: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
3: आप सिर्फ
4: मेरी बात
3: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
4: ये सिर्फ 3। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
3: सिर पे करवा ले
4: शिवानी।
3: हेलो,
4: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात
3: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
4: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन करना, शिवानी मेरी बात सुनो।
3: नहीं नहीं,
4: बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बत्तमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
3: कुकड़ुकु
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन।

ये तो हम जानते हैं कि देवानंद साहब अक्सर नए टैलेंट को फिल्मों में चांस देते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। पर क्या आप जानते हैं कि इन टैलेंट में शत्रुघ्न सिन्हा साहब भी शामिल हैं? शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने अपनी लाइफ में जो पहला एक्टिंग रोल साइन किया था वो देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी के लिए था। उस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा दूसरे देश के मिलिट्री ऑफिसर का रोल निभाते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के काम से इम्प्रेस होकर देवानंद ने फिर अपनी एक और फिल्म गैम्बलर में भी उनको एक अच्छा खासा रोल दिया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

पुरानी चीज विद चारू उंगली और मिर्ची, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: विनोद खन्ना साहब रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब उनके फादर वेल टू डू अफ्लुएंट बिजनेसमैन थे और विनोद खन्ना साहब एक रिबेल टाइप के थे। अपनी टीनेजर में बहुत पार्टी वार्टी करते थे और ऐसी एक पार्टी में उनको सुनील दत्त साहब ने देखा और फिल्म ऑफर की। लेकिन ये बात जब उन्होंने अपने घर में बताई तो घर से तो मना हो गई। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में विनोद खन्ना साहब ने क्या शेयर किया था।
1: मैंने अपने फादर से ये कहा था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो मैं उस वक्त 18 साल का था, 19 साल का। बिसाइड्स बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द हाउस, बाकी सब इवन मेरे साथ वो चीजें हुई, पर वो एक रिबेलियन हो गई थी उस वक्त कि भाई मैं ये बनना चाहता हूँ, मुझे करने दीजिए। माय मदर वाज ऑलवेज सपोर्टिव बट माय फादर हैड अ लिटिल हेसिटेशन बिकॉज़ ही वाज वरीड। आई केम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, ही वाज ऑल प्रिपेयर्ड टू यू नो पुट मी इनटू बिजनेस बिकॉज़ ही चेंज्ड हिज एटीट्यूड लेटर व्हेन ही सॉ दैट आई यू नो दैट आई गॉट द सक्सेस दैट आई एंड आई डिजर्व टू बी वेयर आई वाज। ही वाज वेरी नाइस टू मी देन, बट इनिशियली तो उस वक्त तो हर कोई पेरेंट कोई किसी को जाने नहीं देता था फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री वाज द बिग बैड वर्ल्ड।
0: और आप सोचिए इस बिग बैड वर्ल्ड में उनकी शुरुआत विलन वाले रोल से हुई तो मम्मी पापा कितना ही घबरा गए होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1965 में जब शमी कपूर जी की वाइफ गीता बाली जी की डेथ हो गई, तो उसके बाद शमी कपूर जब वापस काम पर आए तो उन्होंने पता है पहली चीज क्या शूट की थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वो फिल्म थी तीसरी मंजिल और वो शूटिंग थी उस गाने की जिसे मरते दम तक शमी कपूर जी अपनी वाइफ गीता बाली जी से कनेक्ट करते रहे, रिलेट करते रहे। ये गाना था तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये जमी थम गया आसमान। सुन लेते हैं ये गाना पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Hello, उसको वहां से मत उठाओ यार. Hello.
3: हेलो
4: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब. इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से. हेलो हेलो भाई साहब.
3: हाँ जी बोलो.
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन?
3: हाँ जी देते.
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान. भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ. ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे. ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार. कोई
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो.
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
3: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम.
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को. हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है.
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप.
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी.
3: भाई साहब क्या उठवाना है?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको.
3: हाँ
4: सामान उठवा.
3: क्या कर रहा है?
4: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते? तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ. सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है.
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा. हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा. मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं. हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

0: न सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट गाना।

0: Milchi. Escabana, buscabana, sacabana.
1: Rabana.
0: Burga, burga. La fiesta la burga.
1: Milchi, burga.
2: Hello,
3: Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आपसे ना वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसा कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गाके सुनाएगी.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर. वो देखा है ना कोंडा आपने? है ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको.
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया. सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
2: सुन ले बात, मेरी बात सुन, पहले बात सुन.
3: हाँ सर.
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है तो ये बंद कर रहा
3: है. सर बोलिए.
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: पूर्ववस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ
2: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: तो सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: समय के साथ खुद को अपग्रेड करना एक स्मार्ट चॉइस क्यों होती है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर श्रेया, हाल ही में मैंने एक कई दिनों से सोच रहा था, एक AI का कोर्स किया और मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज सडनली जिस तरह से मैं AI को समझ रहा था, जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहा था कुछ दिनों पहले तक, और अब जिस तरह से बात कर रहा हूँ, समझ रहा हूँ, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम सबको लगता है कि पढ़ने से, अखबारों में पढ़ने से, इंटरनेट पे पढ़ने से हमको AI समझ में आ जाता है, ऐसा नहीं होता। और फिर मैं, क्योंकि मेरी बेटी के एग्जाम्स के सिलसिले में कई लोगों से बात कर रहा हूँ, करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ, कुछ बच्चों से मैं मिला, तो एक बच्चा मुझे कह रहा है कि भाई मेरे 4 साल के इंजीनियरिंग डिग्री का क्या फायदा है, कुछ सालों में तो सब कुछ AI कर लेगा, मेरी तो जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं अपने ऑफिस में एक 45 साल के लगभग एक अकाउंटेंट से मिला, कहता कि महीनों में जो मैं करता हूँ वो GPT 10 सेकंड में कर देता है। फिर एक दुकानदार से मिला, वो कहता है कि 10 सेकंड छोड़िए, हमारा धंधा तो बहुत पहले ही बहुत सारे बड़े बड़े जायंट्स ने ऑलरेडी ले रखा है, हमारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है।

0: आप देखेंगे कोई पॉडकास्ट है हर जगह पर ही आता है.
1: बिल्कुल.
0: आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, बट फिर भी जो हम देखते हैं कि किसी भी चीज का फियर होने के जगह ये जरूर होना चाहिए कि हम किस तरह से अपने को अपग्रेड कर सकते हैं. वन, कि अगर हमें रेलेवेंट रहना है, एंड दैट इज वाई जैसे आपने भी कहा आपने एआई का कोर्स किया. आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने एकदम रियलाइज किया कि अभी इसकी बहुत ज़रूरत है. वो तभी रेलेवेंट रहेंगे जब वो ये कोर्स करेंगे. तो कईयों ने ये कोर्स किया. तो पहली चीज, हम अपने को अपग्रेड करते रहे, डरे नहीं.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.
3: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए. इट्स अ जर्नी. चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: किसी एक बात पर कांस्टेंट डिस्कशन हमारी मेंटल पीस को कैसे अफेक्ट कर सकता है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एआई के फियर से ज्यादा जो चीज हमें डिप्लीट कर रही है ना, वो इसके बारे में कांस्टेंट कॉन्वर्सेशन, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो कोई एक्सपर्ट नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं वो एक्सपर्ट है। अगर उस फील्ड का कोई एक्सपर्ट है तो वो आपको दोनों चीज़ें बताता है। वो ये कहता है कि हाँ हाँ फ्यूचर में ऐसा हो सकता है इन जॉब्स के ऊपर, वो रियलिटी बताते हैं ये जॉब्स की वैल्यू नहीं रहेंगे, और फिर वो ये भी बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आप रेलिवेंट रह सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा हमारा जो लाइफस्टाइल अभी हो गया है उसमें स्पेंडिंग ज़्यादा है, सेविंग्स काफ़ी कम है, वो फियर बना रहता है जॉब लॉस का। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लगता भी है कि कभी कोई टाइम ऐसा आ सकता है आपके जीवन में, डिफ़िकल्ट टाइम आ सकता है, पिछले 2-3 सालों से चाहे वो एआई है, चाहे वो एक कांस्टेंट लेऑफ्स इंडस्ट्री के अंदर है, एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इन एवरी इंडस्ट्री, आप देखें चाहे वो आईटी की थी, चाहे वो मीडिया की इंडस्ट्री है, उससे क्लियर आपको मना कोई अगर सीखना चाहे तो वो समझता है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए जिसमें सेविंग ज़्यादा है, खर्चे कम है, आई एम नॉट डिपेंडेंट। हमारे को जो ज़्यादा चिंता होती है ना वो सोच सोच के होती है, बोझ जो होता है वो सोच का होता है। सोच कहती है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, वाई नॉट मेक सम चेंजेस इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ को इतना सिंपल कर दें, अपने खर्चों को थोड़ा सा कम कर दें, अपनी सेविंग्स को थोड़ा बढ़ाने लग जाएं, तो फिर ये कुछ चीज़ें आपके ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालेंगे जितना अभी डाल रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई फील। बाकी तो जो होगा हम सब मिल करके देखेंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy, it's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 only on मिर्ची, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: जब बुजुर्ग अपने बच्चों को लेकर कंप्लेन करने लगे तब बच्चों को उनकी इमोशनल स्टेट को कैसे समझना चाहिए, आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, मैं सुबह ना वॉक करने जाता हूँ, तो वॉकिंग करते करते क्या होता है कई बार साथी बन जाते हैं, और इत्तेफाकन क्या हुआ कि मेरे साथी 15 साल के बच्चे भी हैं और 60 साल के लोग 70 साल के लोग भी हैं, और बहुत मजा आता है सुबह, सब अच्छे मूड में होते हैं, सुबह का माहौल भी बड़ा अच्छा होता है। तो कुछ दिनों से मैं एक 60 70 80 साल के जो ग्रुप हैं उनके साथ बैठ के वहाँ चाय वगैरह भी पीता हूँ, तो जो कॉमन भाषा जो उनसे मैं सुनता हूँ, अरे बच्चे सारे बाहर चले गए, उनको हमने 30-40 साल हमने उनको सेटल करने में लगा दिया, हमने अपनी ज़िंदगी दे दी और वो आज हमें फ़ोन भी नहीं करते, तो ये कॉमन रिफ्रेन है जो मैं सुनता हूँ, वॉकिंग ग्रुप में सुनता हूँ, जब मैं किसी फेसबुक ग्रुप में पोस्ट में देखता हूँ वहाँ पर भी सुनता हूँ, मैं मंदिर जाऊँ वहाँ पर भी सुनता हूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ ये बहुत कॉमन रिफ्रेन है कि बच्चे तो बाहर चले गए, हमने उनके लिए बहुत कुछ किया और वो हमें फ़ोन भी नहीं करते, हम यहाँ बैठे बैठे घड़ी देखते रहते हैं, फ़ोन उनका नहीं आता। तो व्हाट आई रियलाइज्ड इज बुजुर्ग जो हैं उनके लिए एक्चुअली समय से ज़्यादा ज़रूरी पैसा नहीं है, उनको वक्त की बहुत ज़रूरत है, लेकिन धीरे धीरे मैं ये भी रियलाइज कर रहा हूँ वो अपने आप को धीरे धीरे इररेलेवेंट समझने लग गए हैं, तो इससे वो कैसे बाहर आए?
4: इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज तो देखो, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर हमेशा ऐसा होता था कि पहले बड़े बच्चों को संभालते थे
3: जी,
4: फिर बच्चे बड़ों को संभालते थे, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ये ओल्ड एज होम होना ये सब नहीं था, इसकी जरूरत भी नहीं थी, एंड इट वर्क्ड वेरी वेल, क्योंकि जैसे आपने कहा कि कितनी भी धन हो कितना भी संपत्ति हो लेकिन ज़रूरी होता है प्यार अफेक्शन, जब वो परिवार के साथ हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन उनके फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो उनको पता नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है, दैट इज़ वन एस्पेक्ट कि वो ज़रूरी था, एक बच्चे का हम कहते थे कर्तव्य है। बट एट द सेम टाइम अगर आप वर्ल्ड के सिनारियों को चेंज होते हुए देखें, तो जिस बच्चे को हम आज पढ़ाते हैं हम कहते हैं हमने उसमें बहुत इन्वेस्ट किया, अब मैंने कई बार ऐसा देखा है वेरी क्लोजली कि उन बच्चों को नौकरी बाहर मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्मॉल सिटी से हैं, आप उसको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर आप उसको एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, अब उसको जो जॉब मिलती है वो भी एक सिटी में ही मिलती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: पेरेंट्स और बच्चे एक कॉमन ग्राउंड पर आकर मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आइए समझें।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: मतलब बच्चों के भविष्य के लिए पेरेंट्स भी ये चाहते हैं कि भाई वो सेटल हो जाए।
5: वो भी चाहते हैं, मतलब उसमें कोई बच्चे का भी फॉल्ट नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर जाना चाहता है, पर उसको भी करियर बनाने के लिए जाना पड़ता है। फर्स्ट चीज कि उसकी भी ये मजबूरी हो जाती है। सेकेंड, जब तक वो अपनी फैमिली को सेट करता है, तो अब आप देखें कि उस समय पर एक फैमिली को संभालना और इस समय पर एक फैमिली को संभालना,
4: बहुत फर्क है।
5: उसमें बहुत फर्क है
4: जी।
5: इस समय पर उनकी डिमांड ज्यादा है, एजुकेशन के प्रति टाइम देना, खर्चे ज्यादा हैं, तो उसको इस फैमिली के अंदर भी बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है। हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं है कि उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं, पर वो भी उतना टाइम दे नहीं पाते। बट एट द सेम टाइम आई फील कि जो आप कह रहे हैं कि वो फोन भी नहीं करते या बात भी नहीं करते, उतना तक इग्नोर नहीं करना चाहिए। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है वो अंडरस्टैंडेबल है। अगर जो चीज कंट्रोल में है, फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को ले आए, पर कई बार मैंने देखा पेरेंट्स भी नहीं आना चाहते। बच्चे तो कई बार कहेंगे हम विदेश में हैं, आप वहाँ आ जाओ, हम सिटी में, आप वहाँ आ जाओ, पर उनका अपना फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, अपना सेटअप होता है, अपना कंफर्ट जोन होता है, वो नहीं आना चाहते, विच इज़ ओके, बट आप ऑफर करते हैं। सेकेंडली, कम से कम आप उनको रोज़ कॉल तो करें, कॉल करके पूछना वो ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी के कई साधन हैं, कुछ फेस टाइम है। अगर उस पेरेंट की आश है कि मैं एक बार आपको दिन में देख लूँ, मैं एक बार अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को देख लूँ, मैं एक मिनट आपसे बात कर लूँ, और इतनी चीज़ भी अगर उनको सेटिस्फाई करती है, तो मुझे लगता है इतना समय निकाल करके हमें करना चाहिए। कभी कभी ये भी देखा गया है कि जो बुज़ुर्ग हैं वो फिर कई बार बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो जाते हैं, अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इतने ज़्यादा बीमारियों के आदि भी हो जाते हैं कि कभी कभी उनको संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो भी मजबूरी से उस बच्चे को वो कदम उठाना पड़ता है कि अगर हमने इनको अभी ऐसे किसी होम में नहीं रखा, हम कैसे मैनेज करें, वर्क भी मैनेज करना है, अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है। सो आई थिंक इट इज़ बोथ वेज। आई डोंट ऑलवेज सी कि ये पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, आई डोंट ऑलवेज सी ये बच्चे की प्रॉब्लम है, पर जहाँ तक हो सके एक दूसरे को सपोर्ट दें, फिजिकली भी, फाइनेंशली भी और इमोशनली भी।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब बुजुर्ग खुद को इररिलेवेंट या इग्नोर्ड फील करने लगे तब फैमिली को क्या करना चाहिए, आइए जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जैसे जब हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, जब वो थोड़े बुजुर्ग हो जाते हैं और बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं या बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, ज्यादातर पैसे या फिर समय की बात नहीं होती, पर्पस की बात होती है, क्योंकि उनको सडनली लगता है अब हमारा जिंदगी में पर्पस नहीं रहा और वो धीरे धीरे अपने आप को इररिलेवेंट समझने लगते हैं। तो एक हमने बात की जिसमें कि बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, वो एस्पेक्ट हमने कवर किया। लेकिन जो बुजुर्ग हैं आज, जो 70 साल की उम्र या 80 साल की उम्र है और जिनके बच्चे बाहर हैं और वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनको लगता है हमारी जिंदगी का कोई पर्पस ही नहीं है, बच्चों के कारण ही हम हैं, उनके लिए क्या संदेश है?
4: सर, मुझे लगता है जब तक आपकी फैमिली थी तो बहुत जरूरी था आपके लिए काम करना और धन कमाना। एक धन बहुत बड़ा पर्पस ही हो जाता है उस समय पर। डेफिनेटली आप जो कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन मनी एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी होती है। किसी किसी घर में आप अकेले कमाने वाले होते हैं, लेकिन जब आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल्ड हो जाती है, आप 60-70 के बात कर रहे हैं, आप रिटायर्ड हैं, तो फिर आपके जीवन का पर्पस होना चाहिए सेवा, जो हमारी भारतीय संस्कृति में भी सिखाया जाता है, टू गिव बैक। आप अपने को भी एम्पावर करते हैं, चाहे वो मेडिटेशन से है, चाहे वो सत्संग से है। आई सी लॉट ऑफ पीपल जो कहीं पर ग्रुप्स में बैठ, टाइम है उनके पास
3: जी।
4: ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं है, लेकिन वो उस टाइम को इधर उधर की बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कहती वो राइट है कि रॉन्ग है, लेकिन अगर वो ही टाइम थोड़ा सा भी अपनी पर्सनल ग्रोथ में लगाएंगे तो उनके मन में इतनी नेगेटिव थिंकिंग नहीं होगी, इतनी एक्सपेक्टेशन भी नहीं होगी, इतनी डिजायर भी नहीं होगी, क्योंकि वो सत्संग ही, वो परमात्मा की याद या मेडिटेशन या कोई स्क्रिप्चर या कुछ उनको भरेगा।

0: मीडियम टू गिव, चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे कर्मणा से, आप कहीं पर भी सेवा कर रहे हैं, आप फिर सिर्फ अपने बच्चों पर डिपेंडेंट नहीं होते
1: जी।
0: आप जो सेवा करते हैं उससे आपको दुआएं मिलती हैं, उससे आपको खुशी मिलती है, आप भरपूर फील करते हैं। तो व्हाई नॉट यूज दैट टाइम, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ और सेवा के लिए यूज करें।
1: और एक्चुअली मैंने देखा जो बिजी होते हैं ना, उनसे बात करने में भी मजा आता है, बिकॉज दे हैव अ लॉट टू कंट्रीब्यूट। वो उस कॉन्वर्सेशन में भी हिस्सा लेते हैं, वो बताते हैं कि आज मेरे दिन में ये हुआ, आज मैं इससे मिला। तो वो केवल सुन नहीं रहे होते हैं, वो कंट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं।
2: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब हम अपनी सेल्फ आइडेंटिटी को सिर्फ अपने रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज से जोड़ने लगे तब क्या करें, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: हम अभी धन नहीं कमा रहे या अगर हमारी कोई पोजीशन नहीं है तो हम इरेलेवेंट है। तो हमने सारा जीवन जो अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी बनाया है वो अपने रोल से बनाया है
4: जी।
3: हमें लगता है कि हम तब तक ही वैल्यूबल हैं
4: जब तक लोग हमारे सुनते हैं,
3: नहीं जब तक हमारी कोई पोजीशन है या जब तक हमारा कोई प्रोफेशन है, दैट इज ओनली व्हेन पीपल विल रिस्पेक्ट मी।
4: पोजीशन कभी कभी हेड ऑफ द फैमिली भी होता है ना, कि लोग मेरे सुनते हैं, मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ। और जब
3: पर हर रोल जाएगा, लेट पीपल लाइक यू फॉर हु यू आर
4: इंस्टेड ऑफ व्हाट यू आर
3: और व्हाट यू हैव एक्वायर्ड। क्योंकि जो आपने एक्वायर किया है
4: वो तो जाएगा,
3: वो कोई भी परमानेंट तो है नहीं। पहले तो फिर कुछ फिक्स टाइम होता था, अच्छा 58 में रिटायर होंगे, अब 65 में ही होंगे। आज के समय पर तो इतनी इनसिक्योरिटी है, आपको कुछ भी नहीं पता कि जो रोल आज आपके पास है वो रोल 6 महीने के बाद भी आप तक रहेगा कि नहीं रहेगा।
4: बिल्कुल।
3: तो इतनी जब अनसर्टेनिटी है तो अपने रोल से आप इतना अटैच्ड नहीं हो सकते। सेंस ऑफ आइडेंटिटी जो है, सेल्फ वर्थ जो है, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई अक्वायर। आई एम सेपरेट फ्रॉम व्हाट आई डू। हम दोनों को मिक्स कर देते हैं तो हम डूइंग से अपनी सेल्फ वर्थ बनाना शुरू कर देते हैं, इसीलिए हमें इररिलेवेंट लगता है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Raj Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Healthy mind के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: खुद को इतना जेन्युइन कैसे बनाएं कि लोग आपको आपकी पर्सनालिटी से याद रखें, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक बहुत कमाल की चीज है सिस्टर, मैं ट्रेनिंग में कई बार करता हूँ, मैं जब लोगों से मिलता हूँ पहली बार तो मैं उनसे पूछता हूँ आप प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें मुझे ताकि मैं आपको जान सकूँ, और आप बताएं आपका नाम क्या है, आप क्या करते हैं और कहाँ से आए। बेसिकली मैं उनको बोलता हूँ मैं जानना चाहता हूँ आप कौन हैं। तो जब मैं उनसे पूछता हूँ आप कौन हैं, वो ज्यादातर बोलते हैं मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से आया हूँ, और मैं फिर वो अपना डेजिग्नेशन बता देते हैं जो वो करते हैं, तो मैं सुन लेता हूँ और वो नोट कर लेता हूँ। आखिरी दिन जब होता है ट्रेनिंग का तो मैं उनको फिर से उस दिन की याद दिलाता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन हैं और आपने मुझे बोला कि मैं फला फला हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मैंने आपसे आपका डेजिग्नेशन या आपका रोल नहीं पूछा था, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि आप कौन हैं। और सडनली जिस तरह के रिएक्शन या रिस्पॉन्स उस समय आता है और जितना भरपूर वो महसूस करते हैं, क्योंकि उसके बाद जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत कमाल का होता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ज़्यादातर हम अपने डेजिग्नेशन से, अपने रोल से, हम क्या करते हैं उससे ज़्यादा अटैच होते हैं, बजाय इसके कि हम दरअसल अंदर क्या हैं। और ये बहुत ज़रूरी है समझना, जिस दिन हम समझ जाते हैं ना उस दिन सडनली अ लॉट ऑफ एवेन्यूज ओपन अप।
4: सी द पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी, द पर्पस ऑफ लाइफ इज नॉट टू डू, इट्स बीइंग पीसफुल, बीइंग हैप्पी, बीइंग कंटेंट। यू आर ह्यूमन बीइंग, यू आर नॉट ह्यूमन डूइंग। वो अलग बात है कि जब आप उस बीइंग की अवेयरनेस में होते हैं तो वो जो आपकी क्वालिटी है वो हर डूइंग में रिफ्लेक्ट होती है। जब वो हर डूइंग में रिफ्लेक्ट होती है तो आपका एक रिश्ता हर एक के साथ बनता है, और वो जो रिश्ता है देन द पीपल आर नॉट लाइकिंग यू ओनली फॉर व्हाट यू आर डूइंग,
3: फॉर द पर्सन यू आर,
4: फॉर द पर्सन हु यू आर। और कल को आपका रोल भी चला जाएगा
3: फिर भी वो पसंद करेंगे,
4: आप तब भी उनके लिए रेलेवेंट रहेंगे।
3: बिल्कुल,
4: आज आप उनके टीचर हैं, नहीं हैं, कल आपका रोल बदल जाएगा
3: जी।
4: लेकिन वो कहेंगे नहीं मेरी वो टीचर, आज आप टीचर है भी नहीं।
3: हाँ बिल्कुल, होता ही है स्कूल के टीचर सबसे ज्यादा,
4: वो सब रिटायर हो गए हैं, कोई है कोई नहीं है, पर एंड दैट टीचर वाज रेलेवेंट सिर्फ अपने पढ़ाने के लिए नहीं, क्योंकि उसकी बीइंग में मतलब कुछ उसकी क्वालिटी थी जिसका इम्पैक्ट उस बच्चे पर पड़ा, और वो इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा पड़ा विच वाज ट्रांसफॉर्मिंग।
3: इसलिए सारे टीचर याद नहीं रहते, चंद एक दो हमेशा याद रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आप पे बहुत बड़ा एक गहरा एक अपनी जो छाप छोड़ी है,
4: जीवन पर छोड़ी होती है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर शिवानंद नारगंड से लिखते हैं और उनका सवाल है कि क्या मानसिक स्वास्थ्य पर काबू सिर्फ ध्यान से काम कर सकता है या अलग अलग काम करने से मन को काबू हम कर सकते हैं, इसमें कौन सा सरल और सुंदर मार्ग है?
3: मन को पावरफुल बनाने के बहुत तरीके हैं, उसमें मेडिटेशन सबसे पावरफुल टूल है।
2: जी,
3: ये सबसे पावरफुल टूल है क्योंकि आप कॉन्शियसली अपने मन को दिशा दे रहे हैं। लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, जैसे एक पंछी को उड़ने के लिए दोनों पंख चाहिए।
2: हाँ।
3: अगर वो एक पंख से उड़ता है तो उड़ तो सकता है लेकिन थोड़ी हाइट तक उड़ करके गिर जाता है।
2: जी,
3: ऐसे ही मेडिटेशन के अंदर नॉलेज और मेडिटेशन,
2: हाँ,
3: ये दो पंख होते हैं।
2: अच्छा,
3: क्योंकि हमने जैसे कई बार बात करी कि अगर आपको नॉलेज ही नहीं है
2: तो फिर आप करेंगे कैसे?
3: आप कैसे अपने अपने थॉट्स को कैसे दिशा देंगे? समझो, मुझे ये थॉट आ रहा है अंदर में कि पता नहीं क्या होगा, एग्जाम में पास होगा कि नहीं होगा, इंटरव्यू क्लियर होगा कि नहीं होगा, इतनी बड़ी बीमारी है, पता नहीं डॉक्टर, दिस इज माई नेगेटिव थिंकिंग। अब मेरे पास कुछ तो नॉलेज चाहिए ना जो मैं अपने मन को ट्रांसफॉर्म करके कह सकूं कि नहीं, बहुत अच्छा होगा, अगर नहीं भी इंटरव्यू क्लियर हुआ तो एक दरवाजा बंद होगा तो दूसरा खुल जाएगा, या बीमारी है तो शरीर को है, मैं बीमार नहीं हूँ, मेरा शरीर बीमार है, अच्छा इलाज लेंगे, अच्छा डॉक्टर लेंगे, ठीक हो जाएगा ना। ये ट्रांसफॉर्म करने के लिए और स्टेबल फील करने के लिए आपके पास ज्ञान चाहिए। ज्ञान बोलो, नॉलेज बोलो, विजडम बोलो, सत्संग बोलो, सत्य का संग। कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हम अच्छा सोच पाते हैं, तो ये दो चीजें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तीसरा, सेवा भी आपके मन को बहुत एम्पावर करती है। आप किसी की सेवा करते हैं उससे दुआ मिलती है, वो प्योर एनर्जी भी आपके मन को शांत करती है। तो कोई भी ऐसी एक हैबिट जो आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी बुजुर्ग की कोई सेवा करते हैं, किसी फिजिकली हैंडीकैप्ड की कोई मदद करते हैं, वो दुआ भी आपके पाप को काटती है, पुण्य को जमा करती है, आपके मन की हीलिंग करती है।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: देखो अमेरिका में ना दो चीजें कभी टाइम पर नहीं आती है, सबवे की ट्रेन और देसी लोगों का बस 5 मिनट और। गुड मॉर्निंग माय पीपल, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ मैं सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स जो कि अभी अभी शुरू हुआ है। मैं हूँ तुम्हारी दोस्त, तुम्हारी होस्ट एंड तुम्हारी डेली केओस कोऑर्डिनेटर, तुम्हारी इमोशनल सपोर्ट आरजे, ब्रिंगिंग यू बॉलीवुड की बातें एंड ऑफकोर्स ब्रेकफास्ट वाइब्स ऑल इन वन कॉम्बो प्लेटर। और यार इंडियन एक्सपैट लाइफ भी क्या लाइफ है, राइट? घर पे मम्मी बोलती है जल्दी उठ जाओ, और अब यूएस में अलार्म बोलता है रेंट भरना है बेटा, उठ के काम पे चलो। आज का वेदर जो है वो कैसा है ये बाद में बताएंगे, लेकिन फिलहाल वातावरण एकदम मिर्चीदार बन चुका है क्योंकि मिर्ची मॉर्निंग्स ओनली योर फेवरेट शो हैज जस्ट बिगन। मेरा नाम है प्रिसिला, मैं इस शो की होस्ट हूँ, अगले कुछ घंटों के लिए तुम्हारे साथ रहने वाली हूँ, तो तुम्हारी लाइफ बहुत ही मिर्चीदार होने वाली है। एंड अगर दिन की शुरुआत मिर्चीदार हो जाए तो आगे का पूरा दिन एकदम स्पाइसी हो जाता है। फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम and X, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number hai 9033 mirchi, that's 9033647244. Ab chalate tumhare liye kuch mirchi dar bangers, stay tuned and stay hot.

0: मत उठाया, मैं तेरे से बोल रहा हूँ दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, इतना सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
1: कहाँ भिजवाना है
0: मैं आपको
1: बता दो।
0: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
0: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
0: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
0: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
0: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
1: हाँ
0: सामान उठवा,
1: क्या मजाक कर रहा है?
0: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
0: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे
2: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Imagine waking up one day and deciding आज हिस्ट्री बनाते हैं. और वैसे ही कुछ दिनों के बारे में अब हम बात करने वाले हैं. टाइम ट्रैवलिंग पर चलते हैं फटाफट से. मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स. 1754 में जॉर्ज वॉशिंगटन, यस बिफोर द डॉलर बिल फेम, किक्ड ऑफ द फर्स्ट बैटल ऑफ द फ्रेंच एंड इंडियन वॉर. Fast forward to 1937, Volkswagen was founded in Germany and honestly, every Desi uncle in New Jersey probably whispered, mileage kitna deti hai ye? 1959 mein cutest astronaut ever, space monkeys Abel and Baker came safely back from space. 1961 gave us Amnesty International in London, an organization fighting for human rights worldwide. Aur phir 1998 mein Pakistan conducted nuclear tests in Chagai Hills. After India's tests earlier that month, or 1964 May, India bid farewell to Jawaharlal Nehru with state honors in Delhi. I'm sure iske baad tumhe history boring nahi lagti hogi. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. Instagram aur X par mera handle name hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mujhse connect karne ke liye number hai 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब तुम्हारे गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट के साथ टी फ्रॉम बॉलीवुड. सो अपेरेंटली रिपोर्ट्स आर सेइंग दैट फरहान अख्तर एंड रितेश सिडवानीज एक्सेल एंटरटेनमेंट सेड नै टू रणवीर सिंह रिपोर्टेड कॉम्पेंसेशन ऑफर आफ्टर डॉन 3 सिचुएशन. रूमर मिल फुल स्पीड पर चल रही है और कह रही है कि रणवीर सिंह अलेजेडली ऑफर्ड अराउंड 10 करोड़ कॉम्पेंसेशन एंड फ्यूचर फिल्म डिस्काउंट्स वर्थ 25 करोड़ रुपीज. मतलब बंदे ने लिटरली खुद पर बाय वन गेट टू फ्री ऑफर दे दिया है. बट सोर्सेज क्लेम एक्सेल वाजंट इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग आफ्टर द होल डॉन 3 मेस. आउच, द रिजेक्शन प्रोबेबली हर्ट मोर देन सीइंग योर हिंज मैच अपलोड शादी के पिक्चर्स 3 मंथ्स आफ्टर मीटिंग यू. एंड वेट, इंटरनेट डिटेक्टिव्स आल्सो डग अप अ लिस्ट ऑफ फिल्म्स रणवीर रिपोर्टेडली पास्ड ऑन बिफोर दे बिकेम ह्यूज. वन वॉज कबीर सिंह, देन देर वॉज एनिमल, देन सैम बहादुर एंड लव एंड वॉर एंड बॉम्बे वेलवेट. ऑनेस्टली बॉलीवुड के कास्टिंग डिसीजंस ना अब मुझे ऐसे फील होते हैं जैसे कि बाजार जाकर एवोकाडो चूज करना. पता नहीं चलता है कि अंदर से अच्छा होगा कि नहीं होगा. लेकिन यार, क्रिएटिव डिफरेंसेस हैपन इन सच लाइन ऑफ वर्क्स, स्केड्यूलिंग इश्यूज हैपन एंड कभी कभी स्क्रिप्ट सुन के एक्टर्स खुद ही कह देते हैं यार मैं घर जा रहा हूँ, पैकअप करो. वैसे भी पैकअप से बहुत दूर हूँ मैं, तो चलाती हूँ मिर्चीदार बैंगर्स तुम्हारे लिए राइट हियर राइट नाउ. आई एम गोना रिमाइंड यू कि जाकर मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप पर भी मैसेज डालो यार, 9033 मिर्ची इज माय नंबर, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय पीपल, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और मिर्ची मॉर्निंग्स पर बारी आ चुकी है वेदर का हालचाल जानने की। राइट नाउ इट्स अराउंड 65 डिग्रीज फारेनहाइट एंड क्लाउडी, लेकिन थैंक्स टू हमारी हवा माता इट्स फीलिंग मोर लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट। गुड न्यूज ये है कि रेन का कोई मेजर सीन आज के दिन है नहीं। लास्ट 24 आवर्स में बेरली एनी रेन वॉज देयर एंड नेक्स्ट 24 आवर्स भी काफी ड्राई लग रहे हैं। सो यस, योर फ्रेशली वॉश्ड कार कैन फाइनली टेक अ साई ऑफ रिलीफ। सुबह 7 बजे से लेकर अब तक पार्टली क्लाउडी वाइब्स तो चल ही रही है, लेकिन अब से थोड़ी सी देर बाद सनशाइन जो है वो हमारी लाइफ में एंट्री मारने वाली है, लेकिन तुम्हारी लाइफ में तो मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ। Today's temperature range is between 60 to 75 degrees Fahrenheit, which honestly means कि आज का weather जो है वो फिर से guess the season खेल रहा है। कल तक 83 degrees Fahrenheit था और आज है 75 degrees Fahrenheit का max temperature। Bro, I just want to ask you one thing, are you my ex? Anyway, jokes apart, आज के दिन बाहर निकलने के टाइम पर लेयर के प्लेयर बनना जरूरी है, बिकॉज सुबह सुबह ठंडी रहने वाली है, आफ्टरनून में थोड़ा एसी वेदर हो जाएगा और इवनिंग में फिर से थोड़ी सी सर्दी लगने वाली है तुम्हें। और बाहर जा ही रहे हो इतना बन ठन कर तो सनब्लॉक कैसे भूल जाओगे। एसपीएफ 50 प्लस प्लस प्लस लेकर जाना मत भूलना, लगाकर जाना मत भूलना और साथ साथ में खुद को हाइड्रेटेड रखना बिल्कुल मत भूलना। एंड ऑफ कोर्स मिर्ची की वाइब कैरी करो अपने साथ में, मुझे भी अपने साथ में रखो। इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। अभी टाइम फॉर सम मिर्चीदार म्यूजिक, स्टे ट्यून्ड। Stay hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो देयर माय मिर्ची फैमिली, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन योर फेवरेट शो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बारी आ चुकी है मिर्ची आवर का थ्री। सबसे पहले एक्टर एंड ट्रैवल ब्लॉगर शहनाज ट्रेजरीवाला स्पार्क्ड मेजर डिबेट आफ्टर पोस्टिंग अ वीडियो कंपेयरिंग क्लीनलीनेस इन इंडिया एंड श्रीलंका ड्यूरिंग अ विजिट टू एला रेलवे स्टेशन। सम पीपल अग्रीड विद हर कमेंट्स अबाउट सिविक सेंस एंड लिटरिंग, व्हाइल अदर्स फेल्ट द कंपैरिजन वाज टू हार्श एंड जनरलाइज्ड। नंबर टू पर अ वीडियो ऑफ रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह फीडिंग स्ट्रे डॉग्स सर्फेस्ड ऑनलाइन आफ्टर द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रिपोर्टेडली स्क्वॉश्ड हर एंटीसिपेटरी बेल इन द ट्विशा शर्मा डेथ केस। द वीडियो ट्रिगर्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस ऑनलाइन विद मेनी क्वेश्चनिंग द टाइमिंग एंड पब्लिक परसेप्शन अराउंड इट। रिपोर्ट्स ऑल्सो से अ सीबीआई टीम हैज रीच्ड द रेजिडेंस। एज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशंस आर ऑनगोइंग एंड पीपल ऑनलाइन आर रिएक्टिंग इमोशनली टू द डेवलपमेंट्स। नंबर थ्री पर क्रिकेट से यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल हिमसेल्फ रिएक्टेड आफ्टर 15 ईयर ओल्ड वेब ऑफ सूर्यवंशी ब्रोक हिज आईपीएल 6 हिटिंग रिकॉर्ड। गेल कॉल्ड हिम द न्यू 6 मशीन ऑन एक्स आफ्टर द यंगस्टर स्मैश्ड 65 सिक्सेस दिस सीजन। फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड एक्स एट मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएपर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Escabana,
1: escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
0: Mirchi, murga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर, मैं एक्चुअली आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाते हूँ ना, वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको, मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो.
3: वही सर, है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए. मैं एक पेशकश करूँ. तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
2: मैं पागल है क्या?

0: नहीं चलते, समझ गया ना तो बात है
1: जी सर।
0: और जिसने भी नंबर दिया है क्या, किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
2: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ Priscilla तुम्हारे साथ में on Mirchi Mornings और आज का update is for everyone whose screen time report comes with emotional damage.
2: Mirchi watch it.
1: So Meta, aka the company that owns Instagram, Facebook and WhatsApp, is now testing brand new plus subscription plans. मतलब social media apps ने अब official कर दिया है कि भाई free में use नहीं करना है तुमको और ज़्यादा. Instagram and Facebook plus plans may cost around $3.99 a month, while WhatsApp's plan could be around $2.99 monthly. And what do you get in exchange? Fancy profiles, customizations, super reactions, story insights and extra creator features. Translation? Basically, now even your good morning WhatsApp message can be premium packaging. Honestly, our desi parents are already ahead of this trend. Their subscription model is simple. Beta, shaadi kar lo, uske baad unlimited family notifications free mein tumhe milenge. And imagine paying monthly just to know who ignored your story. Bhai, heartbreak to already complimentary tha. Us par tax lagane ki kya zarurat hai? Waise, creators and small businesses might actually love these tools, especially those running side hustles, जैसे कि फूड पेजेस, डांस रील्स या फिर मीम एम्पायर्स. ऑल्सो कैन वी अप्रिशिएट हाउ सोशल मीडिया हैज इवॉल्व्ड इन लास्ट 5 years. पहले हम लोग ब्लरी पिक्चर्स अपलोड करते थे और आज उसी को हम फिल्टर कहते हैं. पहले बैकलेट फोटोज को हम डिलीट कर दिया करते थे, आजकल वो इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बनकर ट्रेंड कर रहे हैं. फिलहाल जल्दी से जाओ मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम अक्रॉस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम एक्स सब जगह पर, और व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244. अभी चिपक के बैठो यहीं पर, मिर्चीदार गाने आने वाले हैं. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागिन।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट।
2: राज ज्वेल्स विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,700, $4,700 पड़ रहे हैं, उसके साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं और गोल्ड के प्राइजेस अप्रोक्सीमेटली अबाउट 15% इंडिया से कंपेरिजन में यूनाइटेड स्टेट्स में सस्ते हैं। जी हाँ, गोल्ड के प्राइजेस अमेरिका में 15% हिंदुस्तान से सस्ते हैं। कैसे, आइए राज ज्वेल्स की टीम से आप कनेक्ट करें और गोल्ड के प्राइस का कंपैरिजन करते हुए रिस्पॉन्सिबली गोल्ड में राज ज्वेल्स के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड दैट्स इट फॉर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट फॉर टुडे। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट

0: Energy.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. Na viva la murga. Energy, murga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप

0: अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
1: आपको लेनी है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी ये 3 दिन से रोके हुए है, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
1: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
0: शिवानी इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
1: आप सिर्फ
0: मेरी बात
1: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
0: ये सिर्फ 3
1: करता।
0: अच्छा एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
1: सिर पे करवा ले
0: शिवानी।
1: हेलो,
0: आप नहीं आ सकती, मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा मेरी बात,
1: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद ही कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
0: अच्छा शिवानी मेरी बात सुनो प्लीज, फोन करना शिवानी मेरी बात सुनो बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
1: कुकड़ुकु
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: ऐसे कैसे जा रहे हो बाहर यार, अपना राशिफल तो जानकर जाओ। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही थी मिर्ची मॉर्निंग्स एंड यू गेस्ट इट राइट, इट्स टाइम फॉर
2: मिर्ची राशि जोन।
1: Starting with Aries, यानी कि मेष राशि, someone's pitching a life-changing idea today. Relax, Shark Tank judge मत बनो immediately. पहले facts को check कर लो. Lucky color for you is black. Lucky number is 9. Taurus, यानी कि वृषभ राशि, आज details में मत उलझो यार. Big picture पे focus करो because your instincts are smarter than half of the people in office meetings anyway. आज तुम्हारा lucky color is lapis blue and lucky number is 22. Wow, that rhymed. Gemini, यानी मिथुन राशि, आज अननेसेसरी ड्रामा को इग्नोर करो. लेट पीपल आर्ग्यू इन पीस व्हाइल यू सिप योर चाय कॉफी एंड साइलेंटली जज देम. लकी कलर फॉर यू इज आर्कटिक ब्लू, लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि, वर्क लाइफ अपग्रेड मांग रहा है, ओल्ड मेथड्स को रिटायर कर दो बाबा, जस्ट लाइक योर अंकल्स फॉरवर्डेड फेसबुक जोक्स. लकी कलर फॉर यू इज लाइम, लकी नंबर इज 14. लियो यानी कि सिंह राशि, आज थोड़ा सा ईगो पार्किंग में छोड़ दो, हर बैटल को फाइट करना जरूरी नहीं है. स्मार्ट डिटूर्स कभी कभी एनर्जी और हेयरस्टाइल दोनों बचा लेते हैं. लकी कलर फॉर यू इज पर्पल, लकी नंबर इज 1. वगो यानी कन्या राशि, मनी मैटर्स पे केयरफुल रहना आज के दिन. इमोशनल शॉपिंग या फिर लिमिटेड टाइम ऑफर्स, दोनों से थोड़ी सी दूरी बना के रखो. लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 18. और ये था पहला राशि जोन. दूसरा राशि जोन यानी कि बची हुई 6 राशियों को लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में. तब तक तुम ये मिर्चीदार बैंगर सुनो और मुझे फॉलो करो. मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. और व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे 9033647244 पर. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: SHG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक माई क्यूटीज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, और अब टाइम आ चुका है
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, आज सोशल बैटरी थोड़ी सी लो हो सकती है। इट्स ओके टू स्किप प्लान्स एंड रोमांस योर ब्लैंकेट इंस्टेड। लकी कलर फॉर यू इज ब्राउन, लकी नंबर इज 11। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो टेंशन तुमको खाई जा रही है ना, मोस्ट लाइकली इट्स हार्मलेस। यूनिवर्स लिटरली हैज योर बैक राइट नाउ, सो वॉक विथ कॉन्फिडेंस बेब। लकी कलर इज मिडनाइट ब्लैक, लकी नंबर इज 27। सैजिटेरियस यानी धनु राशि, आज फिल्टर को यूज करो वर्ड्स पे। सच बोलना अच्छा तो होता है, लेकिन नेसेसरी सैवेजरी से थोड़ा सा बच के रहना भी जरूरी है। लकी कलर फॉर यू इज सनसेट येलो, लकी नंबर इज 3। केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, स्टॉप थिंकिंग दैट द वर्ल्ड इज अगेंस्ट यू। थोड़ा पॉजिटिविटी भी इंस्टॉल करो सिस्टम में, नॉट एवरी ईमेल इज अ पर्सनल अटैक। लकी कलर फॉर यू इज व्हाइट, लकी नंबर इज 16। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, यू कैनॉट कंट्रोल एवरीथिंग टुडे, हाँ इवन यू। फोकस ओनली ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड बाकी सब कुछ सीन पे ही छोड़ दो मेंटली। लकी कलर फॉर यू इज पिंक, लकी नंबर इज 30। पाइसीज यानी मीन राशि, यू लुक टफ बट इनसाइड थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा है। Smile more today. Your worries don't deserve free rent in your head. Samjhe? Lucky color for you is gold. Lucky number is 7. And that's it for your Rashi Zone number 2. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. This is of course Mirchi Mornings. Ab chalate hai kuch Mirchi Dar bangers. Tab tak tum mujhe follow karo Insta aur X par. Mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: And just like salary rent भर के खत्म हो जाती है, वैसे ही मिर्ची मॉर्निंग्स यहाँ पर खत्म हो चुका है। मेरा नाम है प्रिसिला, रैप अप का टाइम आ चुका है, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक ढिंचैक खबर बताकर जाती हूँ। रिमेम्बर सेल्फी मैंने ले ली आज नहीं, रिमेम्बर दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। ओए अरे मैं ढिंचैक पूजा की बात कर रही हूँ, शी इज ऑफिशियली मैरिड। पूजा जैन AKA ढिंचैक पूजा ने शेयर किए हैं क्यूट स्निपेट्स फ्रॉम हर वेडिंग ऑन इंस्टाग्राम एंड कैजुअली ड्रॉप्ड द बिगेस्ट प्लॉट ट्विस्ट ऑफ द सेंचुरी। बट हियर्स द मिस्ट्री, शी स्टिल हैजंट रिवील्ड द ग्रूम्स फेस। मतलब कि उनके फैंस को और इंटरनेट को FBI एक्टिवेट करनी ही पड़ेगी। देसी आंटीज तो ऑलरेडी जूम कर करके पिक्सल फाड़ चुकी है। ऑनेस्टली आइकॉनिक बिहेवियर है ढिंचैक पूजा की तरफ से, प्राइवेसी लेवल इज 3000। तो ढिंचैक पूजा और उनके ढिंचैक मिस्टर पूजा को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ढिंचैक पूजा के फैंस को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जाते जाते आज अगर कोई ईद मना रहा है तो उसे बिग वार्म ईद मुबारक। मे योर डे बी फिल्ड विद लव, लाफ्टर, गुड फूड एंड रिलेटिव्स आस्किंग यू फॉर ईदीज। अभी इसी नोट पर टाटा बाय बाय फ्रॉम मी, बोले तो प्रिसिला। मुझे फॉलो करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033-647-2444। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

10 out of 10 क्यों नहीं चाहिए चल ओके टेन भरे क्लब में रह जाएगी बिल्लो फिर कल ही तू कौन संभालेगा तुझको जब हो जाएगी टल

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। ये लिखा है मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। गुलजार साहब लिखते हैं, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। थोड़ा सैड हो गया मामला, रोमांटिक वाला सुनते हैं। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे। कैसर उल जाफरी ने ये लिखा है पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो उसको वहां से मत उठाओ यार। हेलो
3: हेलो
4: हेलो आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब। इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
3: हाँ जी बोलो।
4: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते क्रेन?
3: हाँ जी देते।
4: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठा यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार कोई।
3: कहाँ भिजवाना है
4: मैं आपको
3: बता दो।
4: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाते
3: हैं जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
4: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
3: किसको जी?
4: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
3: क्या गिर गया?
4: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
3: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
4: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स तो आप ऐसे उठाना है इसको।
3: हाँ
4: सामान उठवा, तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
3: उठवाना है
4: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
5: हेलो
3: हेलो
5: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया है, रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
3: कहाँ से बोल रहे
5: हैं? रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उमराव जान फिल्म बनने में बड़ी दिक्कतें आई थी, बड़ी दिक्कतें। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सबसे बड़ी दिक्कत जीवन में क्या होती है? पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज बहुत थी इस फिल्म के बनने में। कितनी बार ऐसा हुआ कि फिल्म बंद होने की नौबत आ गई, लेकिन जैसे तैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके फिल्म बना दी गई। इनफैक्ट बहुत सारे सीन्स में ना रेखा ने जो कपड़े पहने हैं, जो ज्वेलरी पहनी है, वो उनकी खुद की है। चलिए, समवेयर इट पेड ऑफ, फिल्म को नेशनल अवार्ड्स मिल गए। और आपको मिल रही है यहाँ पे वही पुरानी दुरानी एक चीज, वो है ब्रेक। बट इट इज अ म्यूजिकल ब्रेक, ऑफ कोर्स गाना सुनेंगे हम पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला
1: तेरा क्या होगा कालिया
2: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
1: अब मिर्ची खा
3: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: Pirani Jeans with Charu only

ಚತುರ ನಾರ ಅಮ ಜೋಡಗನ ಜೇ.

0: हिंदी फिल्मों के पहले सुपरस्टार अशोक कुमार सिर्फ एक अमेजिंग एक्टर ही नहीं, बहुत ही अमेजिंग इंसान भी थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। दादा मुनि बहुत काइंड हार्टेड थे, ऐसा सुनने में आता है कि बहुत सारे फिल्म टेक्नीशियंस की उन्होंने मदद की है। इनफैक्ट एक ऐसा इंसिडेंट भी फेमस है जब एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक टेक्नीशियन को चोट लग गई थी, तब दादा मुनि मेड श्योर कि उसको प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, उसके बाद ही शूटिंग वापस से शुरू हो। अशोक कुमार साहब ने बहुत से नए टैलेंट को चांसेस दिए, उनके साथ काम किया, उनकी हेल्प की, उनको गाइडेंस दी, इंक्लूडिंग हिज यंगर ब्रदर्स अनूप कुमार एंड किशोर कुमार। पर उन भाइयों की फिलॉसफी के हिसाब से चलें तो साहब चलती का नाम गाड़ी है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची
1: बाजू।

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन।

जो प्यार से हर पल प्यार करे वो शायर आशिक आवारा, मैं गंगा तट का बंजारा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये लाइंस लिखी थी अनजान साहब ने, जिनका असली नाम लालजी पांडे था, जो बनारस के थे। और उनकी पोइट्री, उनकी शायरी, उनकी कविताओं की कलेक्शन की एक बुक जिसका नाम है गंगा तट का बंजारा, इसका लॉन्च हुआ था 1993 में और लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन साहब ने। बच्चन साहब की पॉपुलैरिटी में अनजान साहब का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज उनके बहुत सुपरहिट गाने अनजान साहब ने लिखे हैं। लेकिन इतने हिट गाने लिखने के बाद भी अनजान साहब को एक मलाल रहा कि उनको कभी कोई अवार्ड नहीं मिला। यार देखिए, वैसे कलाकार का काम बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अप्रिसिएशन, एक रिकॉग्निशन। थोड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो ऐसा फील करते थे, मतलब इतने सुपरहिट पे हिट गाने आप लिखो, अवार्ड भी नहीं दो, जान ले लो मतलब है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

लाइफ में सोचते हैं क्या और क्या हो जाता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। 1987 की फिल्म इजाजत, इसमें ओरिजिनली नसीरुद्दीन शाह साहब के रोल के लिए संजीव कुमार को साइन किया गया था और अनुराधा पटेल वाले रोल के लिए स्मिता पाटिल को, लेकिन जब तक ये फिल्म बननी शुरू हुई ये दोनों एक्टर्स नहीं रहे। फिर नए सिरे से नए एक्टर्स को साइन किया गया। लाइफ और वक्त का कोई भरोसा नहीं है भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और ये गाना वन ऑफ माय फेवरेट्स, सुनते हैं यहाँ पर मिर्ची पर।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आप सर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं सर आप सुना है वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है, मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं।
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं?
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था, तो स्नेक कहीं घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू, आजा स्नेक निकाल दे। सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ, लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में। नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर, वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो, अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ, उसको भेज दो।
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को।
2: कौन से गाने
3: सर? वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में, यही बात है मेरे लिए। एक पेशकश करूँ? तन डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बताए बांसुरिया। सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे काट खाएगा।
2: सर बोलिए, हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात?
3: जी सर।
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम, इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया, मुर्गा बन गया आपका।

ये गाना है 1978 की फिल्म दिल से मिले दिल का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। कुछ ज्यादा याद रखने वाली ये फिल्म है नहीं, लेकिन इसमें जो एक्ट्रेस थी ना श्यामली, ये कुछ फिल्मों में आई थी, कुछ हॉरर फिल्मों में भी आई थी, लेकिन इस फिल्म के लिए इनको किशोर कुमार ने रेकमेंड किया था। किशोर कुमार जिस बैंक के कस्टमर थे, उसी बैंक में श्यामली के फादर काम करते थे, तो किसी तरह से किशोर कुमार ने इन्हें देखा, इनसे मिले और इनको इस फिल्म के लिए रेकमेंड किया। इसी बात पर किशोर कुमार का एक और गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कादर खान साहब एक सिविल इंजीनियर थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। पढ़ाई के बाद उनकी जॉब एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगी, जहाँ से उन्हें एक महीने बाद निकाल दिया गया। हताश निराश होकर वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया।
1: कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैं अपने ही कॉलेज की सीढ़ियों पे जाके बैठ गया। हमारे प्रिंसिपल साहब जो थे, फकी साहब उनका नाम है, वो ऊपर जा रहे थे, मुझे देखा, बताया खान क्या सर मेरा जॉब छूट गया। ठीक है, इंजीनियर्स को, जॉब वालों को ऐसा होता है, तो ऐसा मुंह नहीं बनाने का। और सुन एक काम कर, एक टीचर 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाने वाला, वो छुट्टी पे बाहर गया है 2 महीने के लिए, तू काम करेगा टेम्पररी उसकी जगह पे? मैं करूँगा सर। तो टीचर बन गया। अब 2 महीने के लिए टीचर बना, वो उन सब्जेक्ट्स का मैं टीचर बना जिनमें मैं खुद फेल हुआ था, ज्योमेट्रिकल मशीन ड्राइंग और अप्लाइड मैकेनिक्स। बहुत बोर सब्जेक्ट है सर, बहुत खुश्क, और वो ड्राइंग शीट बनानी पड़ती है ऐसी, साल में 15, कोई बनाता नहीं था। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो लड़कों को मजा आने लगा, मैं भी और दिल लगा के पढ़ने लगा, और सर ऐसा पढ़ाने लगा, 1 हफ्ते बाद मुझे बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड दिया गया।
0: शायद इसीलिए जिन रोल्स में ऐसे टीचिंग प्रीचिंग होती थी ना, कादर खान साहब बहुत अच्छे से निभाते थे। याद है मुकद्दर का सिकंदर में कैसे एक रोते हुए बच्चे को उन्होंने हंसना सिखाया था। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

The cult classic iconic film Guide के गाने पहले हसरत जयपुरी साहब लिखने वाले थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर किसी गाने को लेकर उनका और डायरेक्टर विजय आनंद का कोई आर्गुमेंट हो गया, कोई लाइन विजय आनंद साहब को पसंद नहीं आई उनकी, और उस बात पे कुछ डिस्कशन हो गया जो आर्गुमेंट में बदल गया, और तब हसरत जयपुरी साहब ने ये प्रोजेक्ट छोड़ दिया। उनकी जगह पे फिर शैलेंद्र साहब को लाया गया और उन्होंने फिर इस फिल्म के गाने लिखे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सो रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी तो शुरुआत में मुझे थोड़ी स्लो और बोरिंग लगी, लेकिन बाय द टाइम फिल्म एंडेड आई जस्ट लव द फिल्म। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये फिल्म है 1978 की फिल्म नौकरी, इस नाम से काफी फिल्में बनी है। सो ये 1978 वाली इज डायरेक्टेड बाय ऋषिकेश मुखर्जी, और अब तक तो आपको पता होगा कि उनकी फिल्में मुझे कितनी पसंद है। इसके बारे में मुझे ऑनेस्टली ज्यादा नहीं पता था, बट जब देखी तो पता चला कि वाह क्या सब्जेक्ट है ये। इस सब्जेक्ट पे काफी फिल्में बन चुकी हैं, बॉलीवुड में भी हॉलीवुड में भी। सो बेसिकली इसमें राजेश खन्ना का जो किरदार है वो अपनी जिंदगी से तंग आके अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, और आफ्टर लाइफ में उसे एक बंदा मिलता है जो उसे एहसास दिलाता है कि भाई तुम्हारी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं थी। क्योंकि इस फिल्म को प्री इंडिपेंडेंस टाइम में सेट किया गया है तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अनरिलेटेबल, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगती है, बट ओवरऑल द सब्जेक्ट इज वेरी नाइस। कभी कोई थॉटफुल फिलोसॉफिकल मूवी देखने का मूड हो तो ये वाली जरूर देखना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा सा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता
3: हूँ। अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी।
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना, शिवानी मेरी बात सुनो।
2: नहीं नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली।

1969 की फिल्म दो रास्ते में राजेश खन्ना का जो ऐसे थोड़ी थोड़ी दाढ़ी वाला रगड़ लुक था ना, वो काफी पसंद किया गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये लुक कोई स्पेशली इस फिल्म के लिए नहीं उनका सोचा गया था, ये तो ऐसे इत्तफाकन हो गया था, बिकॉज उस टाइम पे राजेश खन्ना इस फिल्म की और इत्तफाक नाम की फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे। उस फिल्म का जिस तरह का सब्जेक्ट था, इनका लुक वैसा होना था, ऐसा दाढ़ी वाला, तो दोनों फिल्म की शूटिंग साथ में कर रहे थे, दाढ़ी लिए फिर रहे थे, तो इसी से काम चला लिया गया। वैसे दो रास्ते में भी वो ऐसे हैरान परेशान से घूमते रहते हैं, तो उस तरह का लुक उनको सूट हो गया था। चलिए, आपको भी एक लुक बहुत सूट करता है, वो मुस्कान वाला लुक है। मुस्कान जो जाए कान तक, और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। साथ ही रखना, छोड़ना नहीं, ठीक है।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: लेट 60s में जब अस्तानी साहब FTII पुणे में एक्टिंग के प्रोफेसर का काम भी कर रहे थे, वीकडेज में पढ़ाते थे और साथ ही साथ वीकेंड्स में बॉम्बे जाते थे फिल्मों में काम ढूंढने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसी टू फ्रो में उनको ऋषिकेश मुखर्जी की गुड्डी फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल गया। इसके लिए उनको कितनी पेमेंट मिली, सुनिए एक इंटरव्यू में अस्तानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: ऋषिकेश मुखर्जी ने मुझसे पूछा, तू पुणे से आया है? हाँ सर। क्या किराया है? मैंने कहा डेक्कन क्वीन में आया। कितना? मैंने कहा 6 रुपए। 6 आने? नहीं ना, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास तो उन्होंने बैठे नहीं थे। मैंने कहा नहीं सर, बहुत पता नहीं मुझे। अरे पता बुलाया प्रोडक्शन वाला, इधर आओ, डेक्कन क्वीन का पता करो, फर्स्ट क्लास कितने का है। गुड्डी का रोल 2 दिन का, उसके लिए मुझे देने पैसे दे रहे थे। तो उन्होंने पूछा सर 21 रुपीज दे दो। 21 रुपीज और जेब लिफा डाल दिया। मैंने खोला ही नहीं, जाके जब ट्रेन चल पड़ी बाथरूम में जाके खोला तो 250 रुपए। 250 रुपए की कीमत थी और ऋषिकेश मुखर्जी दे रहे पैसे, वो तो लेते थे, देता कैसे। बट लकी, आई एम वेरी लकी।
0: वेल, यहाँ से शुरुआत हुई और इसके बाद तो आई थिंक ऋषिकेश मुखर्जी की कुछ 12-13 फिल्मों में अस्तानी साहब ने काम किया होगा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यू कैन कैच मी ऑन इंस्टाग्राम @rj.charu, rj.charu इस नाम से मिल जाऊंगी। सुनते रहिए मिर्ची।

क्या ही माइंड ब्लोइंग गाना है ये। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और इसमें मोहम्मद रफी साहब की तो मेन आवाज है। वो जो बच्चे वाली आवाज है वो आपको पता है ना, वो सुषमा श्रेष्ठ यानी कि पूर्णिमा श्रेष्ठ यानी कि 90s की वो जो पॉपुलर सिंगर पूर्णिमा है उनकी है। 70s में ये बहुत ही सक्सेसफुल चाइल्ड सिंगर थी, बहुत सारे गाने इन्होंने गाए, मतलब ज्यादातर जो बच्चों की आवाज आपने उस टाइम पे फिल्मों में सुनी है वो इन्हीं की थी, जैसे है ना बोलो बोलो, पापा को मम्मी से, मम्मी को पापा से प्यार, अंदाज फिल्म का जो गाना है उसमें, फिर तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, वो वाला गाना जो है उसमें, ऐसे कई है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, यू आर लिसनिंग टू मिर्ची।

0: आज शो की शुरुआत जरा नॉन फिल्मी अंदाज में करते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि ये बातें इतनी अच्छी हैं कि आपको भी जानना बहुत जरूरी है यार। मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, एंड इन जनरल हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी भरी रहती है, इसलिए कुछ पॉजिटिव सुन लीजिए। सो नंबर वन ऑन द लिस्ट दैट आई एम डिस्कसिंग इज अबाउट दिस कंट्री स्कॉटलैंड, क्योंकि इसने हिस्ट्री क्रिएट की है एज इट हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री जिसने पीरियड प्रोडक्ट सभी महिलाओं के लिए फ्री कर दिया है। ऑन नंबर टू इज मेक्सिको, क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका की फर्स्ट कंट्री बनी है जिसने कॉस्मेटिक टेस्टिंग बैन कर दी है ऑन एनिमल्स। On number 3 is Indonesia, because they have officially banned elephant riding nationwide. In fact, जो rescued elephants है ना, उनको एक safer and much humane future देने की कोशिश भी जारी है। On number 4 is about the real blue parrots, जिनसे the animated movie Rio inspired रही है। और इनकी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि nearly 20 सालों तक disappear होने के बाद these parrots are finally returning to the wild. कसम से अच्छा लगता है ये सोच के कि there are countries जो सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं but wildlife के बारे में भी सोचती हैं। I agree, we also belong there, but हमारे strays के बारे में तो अलग ही सीन चल रहा है ना यहाँ। Anyway, no comments on that. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ, stay tuned, it's all.

0: Mirchi. Escabana, puscabana, sacabana.
1: Rabana.
0: Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello, usko wahan se mat uthao yaar. Hello.
2: हेलो
3: हेलो, आप होल्ड करना एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
2: हाँ जी बोलो।
3: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
2: हाँ जी देते।
3: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाओ यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं? जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे। ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
2: कहाँ भिजवाना है
3: मैं आपको
2: बता दो।
3: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
2: है जी? उठवा लेंगे उतना ही हम।
3: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
2: किसको जी?
3: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
2: क्या गिर गया?
3: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अभी उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
2: भाई साहब क्या उठवाना है?
3: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको।
2: हाँ
3: सामान उठवा,
2: क्या मजाक कर रहा
3: है? तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ। सेंसेक्स गिर गया यार,
2: उठवाना है,
3: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा। हेलो
4: हेलो
2: हेलो
4: भाई साहब, बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
2: कहाँ से बोल रहे हैं?
4: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
9: खन खना

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मातृभूमि से एक नया अपडेट मिला है और ये अपडेट दिया है कोरियोग्राफर एंड फिल्म मेकर मुदस्सर खान ने। सो उन्होंने एक रिसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि किस तरीके से एक मेजर गाने के सीक्वेंस के लिए सलमान खान ने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 दिनों तक शूट किया था। इनफैक्ट ये लार्ज स्केल गाने का शूट जो है उसमें लगभग 200 डांसर्स भी इंक्लूडेड थे। माइंड यू द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, भाई इस मूवी के लिए मैं स्पेशली काफी एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट द चाइल्ड इनसाइड मी इज क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि ये फिल्म एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी को सुपर हीरो के तौर पे लेकर आ रही है। एंड द रीसेंट अपडेट इज कि इस मूवी ने गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है बिकॉज दे हैव प्लांटेड 10,000 सैपलिंग्स। वेल, द मूवी इज डायरेक्टेड बाय 3-time नेशनल अवार्ड विनर मनीष साइनी, जो 29th ऑफ मे को रिलीज होगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। गवर्नर का ट्रेलर देखा या नहीं? वेल, मनोज बाजपेयी लीड कर रहे हैं इस मूवी को, विच इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स लिंक्ड टू इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1990s में हुई थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा आदा शर्मा भी हैं और इसके म्यूजिक पे अमित त्रिवेदी ने काम किया है, लिरिक्स पे जावेद अख्तर साहब ने, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 12th ऑफ जून। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप और ये फिल्मची लड़की जो है वो आपके अंदर के मिर्ची फिल्मची को ढूंढने वाली है। यस यू नो द ड्रिल कि आपको मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स में जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूं। तो सबसे पहले आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है हार्दिक। तो हार्दिक क्या तैयार है आप? ओके, तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, कटरीना कैफ की कॉमेडी फिल्म जिसमें वो वॉनबी एक्ट्रेस बनी थी,
3: तीसमार खान।
0: ग्रेट, तीसमार खान में कौन मैन यानी कि ठग कौन बना था?
3: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म विद जूही चावला जिसमें ये दोनों लवर्स थे,
3: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम, मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी में जूही चावला के पापा कौन थे?
3: कादर खान।
0: कादर खान की फिल्म जिसमें उनका होटल का बिजनेस होता है,
3: दूल्हे राजा।
0: ग्रेट, दूल्हे राजा में फाइव स्टार महाराजा इंटरनेशनल के सामने ढाबा कौन खोलता है?
3: गोविंदा।
0: गोविंदा की फिल्म जिसमें वो हीरोइन की फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए नौकर बनते हैं,
3: हीरो नंबर वन।
0: हीरो नंबर वन की फीमेल लीड का नाम?
3: करिश्मा कपूर।
0: करिश्मा कपूर का निकनेम लोलो है लेकिन बेबो किसका निकनेम है?
3: करीना कपूर, उनकी बहन ऑफ कोर्स।
0: ग्रेट, करीना कपूर की फिल्म जिसमें रोबोट्स होते हैं,
3: रावण।
0: रावण के मेल लीड का नाम?
3: शाहरुख खान ऑफ कोर्स।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो थेरेपिस्ट बने हैं,
3: थेरेपिस्ट।
0: कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके इस चेन को ब्रेक करेंगे, बट इतना अच्छा जो गेम कंटिन्यू किया है आप,

0: यार लाइफ के बोरिंग गेम्स खेल खेल के परेशान हो गए हो तो जरा आओ मेरे साथ गेम खेलो।
1: श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े मैं तो मिर्ची फिल्मची ढूंढ रही हूँ यार। बेसिकली इस गेम सेक्शन के जरिए मैं आपसे बोलती हूँ अपना नंबर देने के लिए थ्रू माय इंस्टाग्राम और फिर मैं आपको कॉल करती हूँ। उसके बाद फिर ये गेम का सिलसिला चालू होता है जिसके थ्रू मैं आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को निकालती हूँ यार। अभी कुछ देर पहले अनुष्का ने मुझे कॉल किया था, उनसे जो भी सिलसिला चला उसमें ब्रेक लग गया बीच में। अब उस पॉइंट से देयर इज दिस अनदर पर्सन विक्रांत जो मेरे साथ ये गेम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं सर?
3: यस प्लीज।
0: सो वी एंडेड एट बंटी और बबली में लीड एक्ट्रेस का नाम क्या है?
3: रानी मुखर्जी।
0: क्या बात है, रानी मुखर्जी की फिल्म जिसमें उनका नाम टीना था।
3: कुछ कुछ होता है।
0: ऑसम। कुछ कुछ होता है के लीड एक्टर कौन थे?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें उनका डायलॉग है किरण।
3: डर।
0: डर की लीड एक्ट्रेस का नाम?
3: जूही चावला।
0: जूही चावला की एक फिल्म जिसमें वो अक्षय कुमार के साथ नजर आई है।
3: अक्षय कुमार के साथ नजर आई है?
0: हाँ जी।
3: ओ गॉड, दिस इज समथिंग खिलाड़ी।
0: यू आर गोइंग देयर।
3: मिसेस खिलाड़ी।
0: ऑसम ऑसम। तो भाई विक्रांत जी ने तो इस सर्कल को कंप्लीट कर दिया है, तो इसी के साथ आपको भी ये टैग देना बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो इसी के साथ एक बार फिर से कल मिर्ची फिल्मची की खोज जारी रहेगी, बट अभी के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rabala. Murga, murga. La virbala, murga. Milci, murga.
2: Hello.
3: Hello, Mr. Gotham.
2: कौन बोल रहे हैं?
3: सर मैं एक्चुअली आज सर वो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मैं सर आप सुना है फिर वो सिंगिंग विंगिंग सिखाते हैं सर, तो सर गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो सर थोड़े डिफरेंट होते हैं.
2: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
3: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था तो स्नेक का ही घुस गया था, तो मेरे को पोले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ सर, हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
2: सर कुछ गा के सुनाएगा?
3: हाँ वही सर, नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
2: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ उसको भेज.
3: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
2: एनाकोंडा में कौन से गाने हैं?
3: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज, वो उसके अच्छे लगते हैं, उसने काम किया ना कोंडा में यही पाते मेरे लिए. मैं एक पेशकश कर रहा हूँ. ताने डोले मेरा मन डोले, मेरे गले का गया गुजार रे, कौन बजाए बांसुरिया.
2: मैं पागल है क्या?
3: सर बिच्छू वाला, ये बिच्छू मुझे कहाँ खाएगा.
2: सुन ले बात
3: सर.
2: और बंद करिए, बीन में जो बजा रहा है ना बंद कर रहा
3: सर. बोलिए
2: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते, समझ गया ना तू बात है?
3: जी सर.
2: और जिसने तुझे नंबर दिया है, क्या किसने किसने नंबर दिया था तुझे?
4: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं, बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, दिल्ली आपको सुन रही है, छोटा सा मजाक किया है, मुर्गा बन गया आपका.

0: रियलिटी कम फैंटेसी ज्यादा लगती है ये।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से आने वाली मूवीज की बात कर रही हूँ, जो जनरली फैंटेसी का अप्रोच लेकर ही आती है, भले ही वो मेरे और आपके जैसे लोगों की कहानी दिखा रही हूँ, क्योंकि उसमें प्यार इश्क मोहब्बत को लेकर काफी अनरियलिस्टिक अप्रोच नजर आता है। ग्रैंड जेस्चर्स दिखाए जाते हैं, जबकि रियल कमिटमेंट की बातें नहीं होती, और ऐसे क्रूशियल डिटेल्स को अक्सर हमारी ये फिल्में इग्नोर कर जाती हैं। इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ कंपैरिजन फिल्में कर रही हूँ। लिस्ट में सबसे पहले DDLJ वर्सेस बैंड बाजा बारात की बात हुई। अब नंबर दो पे दिल धड़कने दो वर्सेस जानी तू या जानी ना की बात करना चाहूंगी। दिल धड़कने दो में कबीर जैसे ही फारा को देखता है, रणवीर सिंह अनुष्का शर्मा को देखते हैं स्विमिंग पूल के पास, तो एक अलग सा कनेक्शन दिखा दिया जाता है और इमीडिएटली उनकी जो किस्मत है वो दोनों के बीच में एक ड्रामेटिक फ्लो ऑफ रोमांस लेकर आती है और स्लो मोशन के जरिए सारी चीजें एकदम मस्त सी हो जाती है ना। वहीं दूसरी तरफ जाने तू या जाने ना चाइल्डहुड फ्रेंड्स की कहानी और उनका जो ये कोर्टशिप है, जो रिलेशन है, इट इज कॉन्स्टेंट। हाँ, वो कभी बोरिंग हो जाती है, कभी लड़ाई होती है इनके बीच में, बट दैट्स व्हाट अ रियल टाइम रिलेशनशिप लुक्स लाइक, राइट। चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे लेट्स टॉक अबाउट कबीर सिंह वर्सेस बर्फी। सो कबीर सिंह में जिस तरीके से इमोशनल सपोर्ट और प्यार को अग्रेसिव रूप दे दिया गया है, कंट्रोलिंग एंड ऑब्सेसिव रूप दे दिया गया है, दैट वाज रियली वहीं दूसरी तरफ असली पैशन तो बर्फी में दिखाया गया है, वो भी सिंपल कॉन्स्टेंट एक्ट्स ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन के साथ। मतलब बताओ, कोई आपके लिए खाना लेकर आए, आपकी डेली की छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको बिना बोले सॉल्व करता जाए। Well, मेरी इस लिस्ट में अभी और कुछ ऐसी ही फिल्मों की चर्चा बाकी है, but all of that in a while, till then you stay tuned to Mirchi, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Relationships are not just about happily ever afters.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: बट कहीं ना कहीं हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अक्सर यही रूप दिखाना चाहती है एक रिलेशनशिप का. हेलो जी, हाय बाबू मोश. आए आज पांच कपंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे फिल्मों की कंपैरिजन कर रही हूँ जिसमें एक तरफ कुछ अनरियलिस्टिक अप्रोचेस ऑफ रोमांस दिखाए गए मूवीज के जरिए, वहीं दूसरी तरफ कुछ फिल्मों ने बहुत ही रियल टाइम प्यार का इजहार दिखाया है. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर चार पे लेट्स टॉक अबाउट ए दिल है मुश्किल वर्सेस तमाशा, जहां एक तरफ ए दिल है मुश्किल में आर्ग्यूमेंट्स को ड्रामेटिक और एस्थेटिक रूप दिया गया है, कॉन्फ्लिक्ट का फोकस पैशन पेन और ड्रामेटिक एग्जिट लाइंस हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म तमाशा में दोनों ही एक्टर्स के रिलेशनशिप की आर्ग्यूमेंट उनके बोर्डम, उनके आइडेंटिटी क्राइसिस, उनके करियर की अनसर्टेनिटी, इन सारी चीजों को लेकर होती है जो काफी मेसी होती है, अगली होती है एंड डील्स विद द एक्चुअल रूट्स ऑफ देयर इनकंपैटिबिलिटी. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हुए नंबर पांच पे लेट्स टॉक अबाउट साथिया वर्सेस वेक अप सिड, जहां एक तरफ साथिया में काफी स्पॉन्टेनियस प्यार दिखाया गया है कि भाई बंदा और बंदी एकदम से मूव इन कर जाते हैं, एक परफेक्ट डोमेस्टिक ब्लिस में जीते हैं, अवॉइडिंग एवरी एंड एनी लॉजिस्टिकल स्ट्रगल, वहीं दूसरी तरफ वेक अप सिड में काफी रियल टाइम चीजें हैं, जहां एक तरफ सिड के लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आयशा के मैच्योरिटी को बहुत ही खूबसूरती से पिक्चराइज किया गया है. ऑल इन ऑल इन दोनों का रिलेशनशिप इंक्लूड्स मंडेन रियलिटीज लाइक बिल शेयर करना, साफ सफाई करना और इन सारे डिफरेंसेस के बावजूद एक ही घर में साथ ग्रो करना. तो बाबू मोशाए, अब समझ में आया कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हमें प्यार इश्क मोहब्बत को इतना फैंटेसाइज करने पे क्यों मजबूर करती है. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो मिर्ची टॉप ट्रेंडिंग। अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म मातृभूमि से एक नया अपडेट मिला है और ये अपडेट दिया है कोरियोग्राफर एंड फिल्म मेकर मुदस्सर खान ने। सो उन्होंने एक रीसेंट इंटरव्यू में रिवील किया कि किस तरीके से एक मेजर गाने के सीक्वेंस के लिए सलमान खान ने एक नहीं दो नहीं पूरे 5 दिनों तक शूट किया था। इनफैक्ट ये लार्ज स्केल गाने का शूट जो है उसमें लगभग 200 डांसर्स भी इंक्लूडेड थे। माइंड यू द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो, भाई इस मूवी के लिए मैं स्पेशली काफी एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट द चाइल्ड इनसाइड मी इज क्वाइट एक्साइटेड, क्योंकि ये फिल्म एक ग्रैंडफादर, एक दादाजी को सुपर हीरो के तौर पे लेकर आ रही है। एंड द रीसेंट अपडेट इज कि इस मूवी ने गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया है बिकॉज दे हैव प्लांटेड 10,000 सैपलिंग्स। वेल द मूवी इज डायरेक्टेड बाय 3-time नेशनल अवार्ड विनर मनीष साइनी, जो 29th ऑफ मे को रिलीज होगी, सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन इज वेल। गवर्नर का ट्रेलर देखा या नहीं? वेल, मनोज बाजपेयी लीड कर रहे हैं इस मूवी को, विच इज इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स लिंक्ड टू इंडियाज इकोनॉमिक क्राइसिस जो 1990s में हुई थी। फिल्म में मनोज बाजपेयी के अलावा आधा शर्मा भी हैं और इसके म्यूजिक पे अमित त्रिवेदी ने काम किया है, लिरिक्स पे जावेद अख्तर साहब ने, एंड द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 12th ऑफ जून। वेल, अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड वेलकम टू दिस थ्रो बैक थर्सडे। वैसे तो दोस्तों जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ती ही जाती है, लेकिन हम कभी कभार रियर व्यू मिरर में भी देख लेते हैं और शायद उसी के लिए ना थ्रो बैक थर्सडेज बने। तो चलिए आज के इस थ्रो बैक थर्सडे में कुछ पुराने गाने, कुछ पुराने मूवीज के बारे में भी बात करते हैं जिन्होंने यार इतनी सारी मेमोरीज हमें दी है। तो चलिए आज की शाम की शुरुआत करते हैं विद धमाकेदार गाने, बॉलीवुड गॉसिप्स और ढेर सारी नॉस्टैल्जिया। Right here on Mirchi, it's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rambana. Burga, burga. Na vid bala burga.
1: Milci, burga.
2: हेलो।
3: हाय शिवानी।
2: हाय।
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली।
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच। आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया। अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है। आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को। पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा।
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई।
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर,
3: मैं वही बता रहा हूँ। शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है, अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था। एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा।
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना, इसको ये नई गाड़ियों पे करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे वन सेकेंड चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ। ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे, अभी कर लेना। शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है, नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है। आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, अपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ले ना, खरीद नहीं सकता, अपने सिर पे करवा ले जाके उसको, रोका हुआ है।
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए, वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी,
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले,
3: ये सिर्फ 3
2: करता हूँ।
3: अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा,
2: सिर पे करवा ले।
3: शिवानी,
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा। अच्छा, मेरी बात,
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद भी कुत्तों जैसे ना, आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो, प्लीज फोन काटना। शिवानी मेरी बात सुनो
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात सुन लो प्लीज। अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है, मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है, कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार। ज़ोबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना।
2: कुकड़ुकु
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और कुछ जोड़ियां स्क्रीन पर नहीं सीधा दिल पर लिख जाती है, और ऐसी ही एक जोड़ी है अलका याग्निक और सोनू निगम की। और उनका गाना तुम ही देखो ना फ्रॉम द मूवी कभी अलविदा ना कहना, वो इमोशंस लेकर आता है जो हम बोल नहीं पाते, बस महसूस करते हैं। अब सोनू निगम की आवाज़ जैसे दिल की कन्फेशन, और अलका जी की आवाज़ जैसे उस कन्फेशन को समझने वाली खामोशी। और स्क्रीन पर शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की आंखों में वही अनसेड कहानी, उफ। तो चलिए शाम को थोड़ा फील करते हैं उन इमोशंस के साथ, और आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सा सोनू निगम और अलका याग्निक डुओ का आपका फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए तुम ही देखो ना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

आता है ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर बॉलीवुड रोमांस का एक ड्रीमी वॉलपेपर होता तो बैकग्राउंड में ये गाना जरूर होता, सूरज हुआ मध्यम। कभी खुशी कभी गम का ये ट्रैक प्योर लव का स्लो मोशन वर्जन है। जी हाँ, सोनू निगम की स्मूथ वॉइस जैसे सनसेट और अलका जी की आवाज जैसे उस सनसेट के ब्यूटीफुल कलर्स, और स्क्रीन पर शाहरुख खान और काजोल, मतलब रोमांस का एकदम गोल्ड स्टैंडर्ड। तो जी हाँ, अगर आज मूड थोड़ा ड्रीमी है तो ये गाना बिल्कुल परफेक्ट है। और हाँ, आपके हिसाब से बॉलीवुड की सबसे ड्रीमी म्यूजिक जोड़ी कौन सी है, टेल मी ऑन इंस्टाट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR, क्योंकि यार बजाते उनके भी गाने यहां पर। फिलहाल आपके लिए सूरज हुआ मध्यम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं पर सीधा दिल को टच कर जाते हैं। रिफ्यूजी का पंछी नदियां पवन के झोंके, ये एक ऐसा गाना है जो सफ़र जैसा लगता है, क्योंकि उसमें सोनू निगम की आवाज़ यानी बिल्कुल फ्री, बिल्कुल रॉ, जैसे खुला आसमान, और अलका जी की आवाज़ यानी सॉफ्ट सूदिंग, जैसे हल्की सी हवा, और स्क्रीन पर अभिषेक बच्चन और करीना कपूर की इनोसेंस और ये मेलोडी यानी प्योर मैजिक। तो चलिए थोड़ा सा सिंपल प्यार फील करते हैं सोनू निगम और अलका जी की इस अनोखी जोड़ी के साथ फॉर दिस ब्यूटिफुल सॉन्ग। लेकिन दोस्तों आप ही बताना कि कौन सा गाना है जो आपको इंस्टेंटली काम कर देता है, स्पेशली इस पावरफुल म्यूजिकल डुओ का, सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का। तो चलिए फिलहाल पंछी नदियां सुनते हैं राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

संगीत ने बना दी एक अनोखी जोड़ी। शाम शाम दा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियां बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक में हमारी भी बहुत सारी ऐसी फेवरेट जोड़ियां हैं जो यार इतने धमाकेदार गाने हमें दे चुके हैं। और उन्हीं में से एक है सोनू निगम और अलका याग्निक जी की जोड़ी। और यार उनके कुछ गाने सिर्फ रोमांटिक ही नहीं, इंटेंस और फिल्मी और फुल पैशन वाले भी है, जैसे कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी का, बन के तेरा जोगी। ये गाना प्योर जुनून वाला, प्यार वाला गाना है ये। जी हाँ, सोनू निगम की पावरफुल आवाज़, जैसे कि फुल ऑन कमिटमेंट, और अलका याग्निक जी की आवाज़ उस कमिटमेंट को सॉफ्टनेस देती हुई। और जब स्क्रीन पे शाहरुख खान और जूही चावला का प्लेफुल रोमांस दिखता है तो यार ये गाना ना और भी ज़्यादा अलाइव हो जाता है। तो अगर आपको भी वो ओल्ड स्कूल बॉलीवुड वाला इंटेंस प्यार पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइए कि कौन सा गाना आपका फुल्ली फिल्मी लव डिफाइन करता है। टेल मी ऑन इंस्टा आर जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक के पावरफुल कपल का, यानी सोनू निगम जी का और अलका याग्निक जी का, बन के तेरा जोगी, राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vie bala burka. Milci, burka.
1: Hello.
2: Hello, uska wahan se mat uthao yaar. Hello.
1: हेलो
2: हेलो, आप होल्ड कर रहे हैं एक सेकंड भाई साहब, इसको वहां से मत उठाओ यार, ऐसे नहीं उठाएगा यार, टूट जाएगा सारा सामान, टूट जाएगा वहां से, मत करो उसको वहां से। हेलो हेलो भाई साहब।
1: हाँ जी बोलो।
2: ये भाई साहब आप क्रेन किराए पे देते? क्रेन
1: हाँ जी देते।
2: एक सेकंड होल्ड करना, उसको वहां से मत उठाया यार, मैं तेरे से बोल रहा हूँ, दो टुकड़े हो जाएंगे सारे, मत उठा, नहीं उठेगा तेरे से ये सामान। भाई साहब आप क्रेन किराए पे दे सकते हैं, जरा सामान उठवाना है मेरे को कुछ। ये मशीनें बंद कर दे, मशीनें बंद कर दे, सारी मशीन बंद कर दे, शायद सारी बंद कर दे, ये गिर गया है और इसको उठाना है यार, ये अपनी क्रेन वेन भिजवाओ यार, कोई
1: कहाँ भिजवाना है
2: मैं आपको
1: बता दो।
2: नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, आप पहले मेरे को ये बताएंगे आपकी ये क्रेन है इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कितना सामान उठाता
1: है जी, उठवा लेंगे उतना ही हम।
2: नहीं नहीं वो तो एक सेकंड बंद कर दो यार इस मशीन को। हाँ ये आप ये भेज दो, ये इसको इसको उठवा दो यार, ये तो गिरा पड़ा यार, ये इसकी वजह से सारी परेशान है।
1: किसको जी?
2: सेंसेक्स गिर गया है, इसको उठवा दो आप।
1: क्या गिर गया?
2: आप ये टुकड़े ना हो जाए यार, अब ये उठवा रहा था ना उसके टुकड़े को होने वाले थे, तो ऐसा ना हो आप सेक्स सेक्स उठा लो, सेन नीचे रह जाए, तो सेक्स सेक्स सिर्फ आ गया ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
1: भाई साहब क्या उठवाना है आपको?
2: मैं वही आपको बता रहा हूँ, ये सेंसेक्स गिर गया है और पूरा सेंसेक्स सेंसेक्स, तो आप ऐसे उठाना है इसको,
1: सामान
2: उठवा।
1: क्या मजाक कर रहा है?
2: तो मार्केट गिर गया यार, मार्केट गिर गया, उसमें सारे सारे परेशान है यार, आप उठवा नहीं सकते, तीन क्रेन भेज दो यार एक साथ, सेंसेक्स गिर गया यार,
1: उठवाना है
2: तीन क्रेन भेज दो, सेंसेक्स उठवा दो यार, कब से गिरा पड़ा है। हेलो
3: हेलो
1: हेलो,
3: भाई साहब बुरा मत मानिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और फोन मत काटिएगा, मैं आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मुझे मालूम आप सेंसेक्स नहीं उठाते, मार्केट की बात कर रहा था, क्रेन किराए पे देते हैं, आपका मुर्गा बन गया, आप रेडियो मिर्ची पे हैं। हेलो
1: कहाँ से बोल रहे?
3: रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, आप कोई सेंसेक्स नहीं उठाना।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है। कभी रेट्स ऊपर, कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप, तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं, बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और 2005 में रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली, यानी 20 साल हो चुके इस एल्बम को, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही रेलिवेंट है। तो आज हमने सोचा कि आज की शाम में ऐसे ही टाइमलेस गानों के बारे में जो कि बंटी और बबली के एल्बम में है उनके बारे में बात की जाए, उनके बारे में कुछ खास किस्से शेयर की जाए। और आज का जो पहला गाना है फ्रॉम दिस एल्बम इज ऑब्वियसली वन ऑफ आवर फेवरेट सॉन्ग्स, कजरा रे। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन एक फ्रेम में एक साथ इसी गाने में नजर आए थे। और सिर्फ कोई ऐसा वैसा गाना नहीं था, एक आइटम सॉन्ग था, तो काफ़ी हिचकिचाहट थी अमिताभ बच्चन के लिए भी, ऐश्वर्या राय के लिए भी, कि शायद उनसे ये गाना नहीं हो पाएगा। लेकिन वैभवी मर्चेंट ने, जो कि इस गाने की कोरियोग्राफर रही है, उन्होंने उनको भरोसा दिलाया कि नहीं यार, ये गाना आप सब लोग बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे, इस गाने का सेटअप भी इतने अच्छे से किया जाएगा और ये गाना आइकॉनिक बनेगा, ये विश्वास वैभवी जी को था। इतना ही नहीं, ये वो पहला गाना था जो गुलजार साहब ने एज अ फर्स्ट आइटम सॉन्ग लिखा था। और वैसे तो गुलजार साहब काफ़ी सारे जो इंस्पिरेशन होती है उनके गानों के लिए वो काफ़ी अलग अलग चीज़ों से लेते हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्होंने डिसाइड किया था कि कोई भी ऐसे डीप चीज़ से इंस्पिरेशन नहीं ली जा सकती। तो इन्होंने जो इस गाने के लिए इंस्पिरेशन ली थी वो थी नॉर्थ इंडियन जो ट्रक्स होते हैं उसके पीछे जो मैसेजेस लिखे होते हैं उससे, जैसे कि नज़र हटी दुर्घटना घटी। वैसे ही इस गाने में एक लाइन है कि जालिम नज़र हटा ले। और ऐसे ही ये गाना बना वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स रिटन बाय गुलजार साहब। तो जी हाँ, आज सुनते हैं कजरा रे बंटी और बबली के एल्बम से, जो कि 2005 में रिलीज हुई थी, एंड वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स शंकर महादेवन की आवाज़ में। और वैसे तो कजरा रे के काफ़ी सारे सिंगर्स रहे हैं, मतलब जावेद अली, शंकर महादेवन, अलीशा शिनाई, और लेकिन ऑफकोर्स उसका जो एंड पार्ट है जिसमें वो गाते हैं कि तुझसे मिलना पुरानी दिल्ली में, छोड़ा आए कहानी दिल्ली में, तो जी हाँ, ये जो पार्ट है वो मेरा भी फेवरेट पार्ट है। आई होप आपको भी ये गाना पसंद हो। और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट टाइमलेस एल्बम, विच इज़ दैट टाइमलेस सॉन्ग जो आप हमेशा सुनना पसंद करते हो। टेल मी ऑन आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और फिलहाल आज बंटी और बबली के गानों के बारे में बात होगी, तो विच मीन्स कि ये जो कजरारे गाना है ये हमारे लिस्ट का पहला गाना है। तो और भी गाने आने वाले हैं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ ऐसे खास गाने बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारी बातें हो रही है कि यार बंटी और बबली के एल्बम को, जो कि रिलीज हो चुकी थी 2005 में, इस एल्बम को हो चुके हैं 20 साल, लेकिन आज भी उसके गाने उतने ही पॉपुलर है, उतने ही अमेजिंग है। और कजरारे के बारे में तो हमने बात की, लेकिन वन ऑफ द अदर सॉन्ग्स दैट आई एब्सोल्युटली लव इज धड़क धड़क। जी हाँ, ये गाना गाया है उदित नारायण जी ने और सुनिधि चौहान ने, कंपोज्ड बाय नन अदर देन म्यूजिक मेस्ट्रो शंकर महादेवन। और ये गाना जब बन रहा था तब इसकी जो फिल्मिंग होने वाली थी, तब डिसाइडेड था कि ये गाना बनते हुए इसकी फिल्मिंग जो रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के जो होम टाउन्स है, रिस्पेक्टिव होम टाउन, जो कि छोटे शहर है, वहाँ पर ही होनी चाहिए, क्योंकि यार तब लोगों को लगता था कि बड़े शहरों वाले जो लोग होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं। एंड ये पूरा नैरेटिव इन्होंने डिसाइड किया था कि चेंज करना है, नहीं, क्योंकि छोटे शहरों से भी जो छोटी छोटी बातें होती है, जो छोटे छोटा फैशन सेंस होता है, वो अमेजिंग होता है। और ये जो गाना बनाया गया था वो लिखा भी इसी तरीके के लिए गया था, इसी सीक्वेंस के लिए गया था कि छोटे छोटे शहरों से, आधी भोल दोपहरों से, हम तो झोला उठा के चले। तो जी हाँ, ये बहुत ही प्यारा सा एक ऐसा गाना बनाया गया था जिससे हमें हमारे उन छोटे छोटे शहरों की याद आती है जहाँ से हम आए हैं। तो इस गाने की ये खासियत तो थी ही, बट इतना अमेजिंगली ये गाना नॉट जस्ट गाया गया है बल्कि फिल्म भी किया गया है। तो इसी याद में आज इस गाने को प्ले करते हैं। वैसे बंटी और बबली एक ऐसा आइकॉनिक एल्बम है जो हमारे लिए काफ़ी स्पेशल है इवन आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा दूसरा एल्बम है जो आपको बहुत पसंद है, जिसको 20-25 साल हो चुके हैं बट आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और बंटी और बबली का और एक गाना जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूं, तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

वक्त बीत जाता है लेकिन कुछ खास गाने ऐसे बन जाते हैं जो दिल में घर कर जाते हैं। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और आज बातें हो रही है कुछ टाइमलेस गानों के बारे में। और 2005 में यानी 20 साल पहले रिलीज हुई एल्बम बंटी और बबली के यार सारे गाने अमेजिंग हैं। मतलब 20 साल हो चुके हैं लेकिन इस एल्बम के तो एक से बढ़कर एक गाने हैं। और कजरारे के बारे में तो हम बात कर चुके हैं, धड़क धड़क इस गाने के बारे में हम बात कर चुके हैं। द थर्ड सॉन्ग इन दिस एल्बम विच इज़ रियली ब्यूटिफुल इज छुप छुप के, जिसे गाया गया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे यार इस गाने की एक खास बात है कि एक रोमांटिक सॉन्ग तो है ही, एक बहुत ही ब्यूटिफुली कंपोज सॉन्ग है, लेकिन इस गाने को जब रिकॉर्ड किया गया था तब शंकर महादेवन ने इसकी रिकॉर्डिंग कम से कम 3 बार रुकाई थी बीच में, क्योंकि यार तब वो गाना इतना ब्यूटिफुली रिकॉर्ड हो रहा था कि गाने के बीच में ही उनको गूज बम्स आ गए और उनका जो पार्ट था, उनका जो कंपोजिशन था, बीच में ही समवेयर वो अमिस हो गया एंड उस वजह से उनको ये गाना 3 बार ऑलमोस्ट रोकना पड़ा। तो जी हाँ, इतना ब्यूटिफुल कंपोजिशन है छुप छुप के फ्रॉम बंटी और बबली का एल्बम विच वॉज मेड इन 2005। यार 20 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी ये गाना उतना ही ब्यूटिफुल है, उतना ही टाइमलेस है और उतना ही हमारे दिल में घर कर चुका है। वैसे ऐसा कोई और गाना है, ऐसा कोई और एल्बम है तो आप अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, टाइमलेस सॉन्ग जो आपके दिल में आज भी है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए बंटी और बबली का छुप छुप के राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskra bana, puska bana, saka bana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga.
1: Milci, burga. Hello.
2: Hello, Mr. Gotham. Sir, मैं actually आज से रहे हुए request करना चाहूँ. मैं ऐसा आप सुना है फिर वो singing, winging सिखाते हैं sir. तो sir गाने का थोड़ा शौक है. मैं जो गाने गाता हूँ ना वो sir थोड़े different होते हैं.
1: ऐसे कैसे बोल सकता हूँ जब तक आपको सुनाएंगे नहीं.
2: पहले मोहल्ले में हमारे स्नेक निकला था. तो स्नेक का ही घुस गया था. तो मेरे को पहले वाले बोलते हैं कि भाई आजा तू आजा स्नेक निकाल दे. सर मैंने आपको मैं पेशकश कर रहा हूँ. सर हर तरह के गाने खा लेता हूँ लेकिन मेरी स्पेशलिटी है स्नेक में. सर नागिन क्या है सर? नगीना फिल्म देखी आपने? नगीना नगीना फिल्म देखी है सर आपने?
1: हाँ, सर कुछ गा के सुनाएगा.
2: हाँ वही सर नगीना फिल्म में जितने गाने मेरे मन पसंद गाने हैं सर वो देखा है ना कोंडा आपने? ना कोंडा फिल्म देखी है?
1: अरे एक काम करो अपना गाने डीवीडी में कुछ किसी चीज में रिकॉर्ड करके सर, और मैं एड्रेस देता हूँ सुबह.
2: वही सर है ना कोंडा के भी सारे गाने अच्छे लगते हैं मेरे को.
1: कोंडा में कौन से गाने?
2: सर वो हीरोइन तो है ना जेनिफर लोपेज वो उसके अच्छे लगते हैं. उसने काम किया ना कोंडा में यही बात है मेरे लिए. एक पेशकश कर रहा हूँ. Tane dole, mera mane dole, mere gale ka gaya guzar re, kone bataye basuriya.
1: सर साहब
2: सर बिच्छू वाला ये बिच्छू मुझे हाथ खाएगा.
1: सुन ले बात
2: सर.
1: और बंद करिए बीन जो बजा रहा है ये बंद कर रहा
2: सर. बोलिए
1: हमारे यहाँ पे इस तरह के गाने नहीं चलते. समझ गया ना तू बात?
2: जी सर.
1: और जिसने भी ये नंबर दिया है क्या किसने नंबर दिया था तुझे?
3: मिस्टर गौतम इससे पहले कि दोबारा फोन काटे हैं बहुत मुश्किल से मिलता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ. मैं कोई सिंगर नहीं बनना चाहता. आप रेडियो मिर्ची पे हैं दिल्ली आपको सुन रही है. छोटा सा मजाक किया मुर्गा बन गया आपका.

0: देखो शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका थ्रो बैक थर्सडे पे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो थर्सडे है, मौसम बड़ा ही खूबसूरत है और गोल्डन आर भी शुरू हो चुका है। और आपको तो पता ही है, गोल्डन आर में शुरू होता है हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज, जिसमें आते हैं हमारे गोल्ड एक्सपर्ट यानी बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो चलिए स्वागत करते हैं बॉबी जी का आज की इस खूबसूरत शाम में। नमस्ते बॉबी जी और स्वागत है आपका।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। गोल्ड प्राइस ट्रेडिंग है $4,500। देखिए, इससे पहले आपका सवाल है, मैं आपको गोल्ड के प्राइस कल से थोड़ा सा बटरिंग पर चले गए हैं, $4,500 पट रहे हैं आउंस। हालांकि मार्केट लोएस्ट 4370 $4,370 पट रहे हैं आउंस। गोल्ड लोएस्ट टच कर चुका है। अगर 22 कैरेट 1 ग्राम का पर ग्राम का प्राइस पूछे तो अबाउट $131 पर ग्राम, $131 पर ग्राम 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस बैठा है। $1,310 एक तोले का, 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस है। क्योंकि दीजी, बहुत सारे लोगों की कॉल आती है कि हमको ज्वेलरी का पर ग्राम का सोने का आज का भाव जानना है, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं कि गोल्ड के प्राइसेस आज $4,500 पर ट्राई आउंस, $131 पर ग्राम 22 कैरेट 1 ग्राम का प्राइस। और मैं आपके क्वेश्चन के लिए रेडी हूँ।
0: थैंक यू बॉबी जी। तो देखिए, अभी तो फिलहाल ग्रेजुएशन सीजन चल रहा है और थ्रोबैक टू द टाइम्स, जब हम ग्रेजुएट हुए थे तब हमारी एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी इच्छा होती थी कि यार थोड़ा सेलिब्रेशन हो और घर वाले थोड़े नो पैम्पर करें उस दिन। और आज के पेरेंट्स भी वही करना चाहते हैं। तो ऐसे जो पेरेंट्स हैं जिनको अपने बच्चों को ग्रेजुएशन के लिए कुछ बहुत ही सेलिब्रेटरी, बहुत ही प्यारा सा कोई कस्टमाइज चीज अगर करनी है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शन है और किस तरह से वो स्पेसिफिकली गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और दे कैन ऑल्सो मेक यू नो ग्रेजुएशन अ सेलिब्रेटरी मोमेंट फॉर देयर किड्स।
1: देखिए, सबसे बड़ी सेलिब्रेशन तो मैं ये बता दूंगा कि जब आप ग्रेजुएट हुई थी ना, उस दिन का सोने का भाव निकाल लेना और आज का देख लेना, ग्रेजुएशन ऑटोमेटिकली हैप्पी लगने लगेगी। आप परसेंटेज कुछ भी आई हो, चाहे आप मेरी तरह 50% में पास हुए हो या 8++ में पास हुए हो, लेकिन जब सोने का भाव देखोगे ना तो पक्का ग्रेजुएशन डेफिनेटली बेटर लगेगी। जिनके माँ बाप ने उनको गोल्ड ग्रेजुएशन में सेलिब्रेशन में खूबसूरत सी सोने की चेन या पेंडेंट

0: हालांकि सिद्धि जी बहुत सारे अभी यंग जनरेशन हमारे पास इनिशियल्स बनाने आते हैं, नेम प्लेट्स बनाने आते हैं, नेम रिंग्स बनाने आते हैं. ऑब्वियसली व्हेन यू व्हेन द डॉटर और सन इज ग्रेजुएटिंग, ए सिंपल स्मॉलेस्ट काइंड ऑफ ए ब्रेसलेट दैट गोज ऑन देयर रिस्ट लुक्स ब्यूटीफुल, बिकॉज जब वो कॉलेज जाएंगे तो मेमोरीज तो क्रिएट होंगी होंगी, लेकिन साथ में गोल्ड की जो एप्रिसिएशन है, जैसे आज सिद्धि जी ने बोला जब हम ग्रेजुएट हुए थे तो वो भी बोलेंगे जब हमारी ग्रेजुएशन पे पापा ने दिया था, और आज गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं जैसे पिछले साल से आज. सो गोल्ड में इन्वेस्ट करना ना भूलें. ग्रेजुएशन का कोई भी गिफ्ट हो, सिंपल सी चेन हो, ब्रेसलेट हो, रिंग हो, नेम पेंडेंट हो या इनिशियल्स हो, राज ज्वेल्स के पास आपकी हर सेलिब्रेशन के लिए कोई ना कोई खूबसूरत तोहफा रेडी है. आ जाइए मिलकर सेलिब्रेट करते हैं विद राजज्वेल्स.com. थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल.
1: थैंक यू बॉबी जी. तो दोस्तों इसी के साथ अपने ग्रेजुएशन सीजन को बनाइए मेमोरेबल अपने बच्चों के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, और इसी के साथ सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है टाइमलेस सॉन्ग के बारे में जो यार 20-25 साल पहले बने थे लेकिन आज भी उतने ही रेलेवेंट है, आज भी उतनी धूम मचाते हैं। और आज का जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज़ फ्रॉम महेश हु इज़ फ्रॉम एडिसन। और महेश कहते हैं कि उनको जो सॉन्ग रिक्वेस्ट यहाँ पर देनी है दैट इज़ फॉर द सॉन्ग रंग दे बसंती फ्रॉम द मूवी ऑफ कोर्स रंग दे बसंती, 2005 में रिलीज़ हुई थी। और इसका जो टाइटल ट्रैक है, जितने ज़ोर से जितने एनर्जेटिकली 2005 में लोग नाचते थे उतने ही एनर्जेटिकली 20 साल बाद आज भी इस गाने पे धूम मचती है, डांस होता है और उतने ही दिल के करीब है। तो चलिए आज महेश के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं रंग दे बसंती। वैसे दोस्तों, विच इज़ दैट वन टाइमलेस सॉन्ग दैट यू एब्सोल्युटली लव, टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आपके लिए वो गाना मैं प्ले करूंगी राइट हियर ऑन मिर्ची। तब तक के लिए रंग दे बसंती राइट हियर, इट्स हॉप।

शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज हम बातें कर रहे हैं टाइमलेस सॉन्ग्स के बारे में और 2005 की रिलीज्ड एल्बम बंटी और बबली एक ऐसी आइकॉनिक एल्बम थी जिसके सारे ही गाने आज भी उतने ही अमेजिंग लगते हैं। आज भी आप सुन सकते हो, आज भी उस पर डांस कर सकते हो, जैसे कि कजरा रे। वैसे यार हमने ये सारे गाने सुने हैं और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो आ रहे हैं मेरे पास कि आपको कौन सा गाना टाइमलेस लगता है। और इतने सारे जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है उसमें ये गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो रिक्वेस्ट किया गया है प्रिया की तरफ से। प्रिया इज़ फ्रॉम जर्सी सिटी एंड वो कहती है कि जब भी मेरा बॉस मुझ पे चिढ़ जाता है या मेरी मॉम मुझ पे चिढ़ जाती है, तब से मतलब 20 साल पहले 2005 में ही ये गाना रिलीज़ हुआ था, तब से लेकर आज तक उनको शांत करने के लिए मैं मन में या उनके मुंह पे कभी कभार यही गाना गा देती हूँ। एंड द सॉन्ग इज़ जस्ट चिल चिल जस्ट चिल। जी हाँ, जब भी मेरे भी मतलब मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, मैं खुद को यही कहती हूँ। और जस्ट चिल बोलना होगा तो नॉर्मली हम नहीं बोलते, गाने में ही बोलते हैं जस्ट चिल चिल, जस्ट लाइक सोनू निगम। तो 2005 का ही ये गाना है, 20 साल हो चुके हैं जस्ट चिल गाने को। तो आज प्रिया जी आपके लिए वो मैं प्ले करने वाली हूँ। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन टाइमलेस सॉन्ग फॉर यू जो आज भी आप गुनगुनाते हो। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI एंड आई प्ले that song for you right here on Mirchi. It's hot.

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। आज की जो शाम है डेडिकेटेड है फॉर द टाइमलेस सॉन्ग्स जो कि यार बने थे 20-25 साल पहले, लेकिन आज भी उतने ही रेलिवेंट है, आज भी दिल के उतने ही करीब है। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग रिक्वेस्ट इज फ्रॉम यू गाइज, और वो सॉन्ग रिक्वेस्ट है फॉर द सॉन्ग बुमरो बुमरो मिशन कश्मीर का ये गाना है जो फरमाया गया है ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा पर। और यार ये जो गाना है इसकी एक बहुत ही खास बात है, वैसे तो इसे गाया गया है जसपिंदर नरूला, शंकर महादेवन और सुनिधि चौहान ने, लेकिन जब ये गाना बनाया गया था, यानी ओरिजिनली जब ये गाना बनाया गया था, तो दैट ओरिजिनल सॉन्ग इज संग बाय दीनानाथ नदीम, जो कि एक बहुत ही सिंपल सी ट्यून थी बुमरो बुमरो, जो कि कश्मीरी ओपेरा का पार्ट था। तो जी हाँ, वहां से ये गाना इंस्पायर्ड है। और आज हमारे शो में इस गाने को रिक्वेस्ट किया है प्रीति ने, जो कि है फ्रॉम जर्सी सिटी। तो प्रीति प्रीति जिंटा का ये गाना सुनना चाहती है, मिशन कश्मीर का बुमरो बुमरो। वैसे इस गाने के साथ आई एम प्रीटी श्योर काफ़ी सारे लोगों की मेमोरीज होंगी, क्योंकि वन ऑफ द एक ऐसा गाना है ये जो बचपन में इस पर हम सब ने डांस किया होगा, स्पेशली स्कूल के फंक्शंस में। मतलब मेरे साथ तो इतना बड़ा ट्रोल हुआ है इस गाने के साथ कि मैं जब अपने स्कूल में थी तब मैं इस गाने पे डांस करने वाली थी, एंड मुझे प्रीति जिंटा नहीं बनाया गया था, मतलब आई वॉज नॉट इन द गर्ल्स पार्ट, आई वॉज इन द गाइज पार्ट। तो मैं ऋतिक रोशन की तरह बस ऐसे हाथ हिला रही थी, सो आई वॉज प्लेइंग द ऋतिक रोशन पार्ट एंड नॉट प्रीति जिंटा पार्ट, बिकॉज यार इतनी सारी लड़कियों को इस गाने पे डांस करना था कि लड़कियों के स्लॉट फुल हो चुके थे, तो इसलिए मुझे और बहुत सारी लड़कियों को हमको ऋतिक रोशन का पार्ट दे दिया गया था। सो येस, आई एम प्रीटी श्योर ये गाना उतना स्पेशल सभी के लिए होगा, एंड आप में से कई सारे लोगों ने बचपन में इस गाने पे डांस तो ज़रूर किया होगा, स्पेशली स्कूल्स या अपने कॉलेज फंक्शंस में या ऐसे ही कहीं पर। तो अगर आपने भी किया है तो मुझे ज़रूर बताइए, टेल मी ऑन माई इंस्टा हैंडल एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और उसी के साथ साथ आप अपनी टाइमलेस सॉन्ग रिक्वेस्ट भी मुझे भेज सकते हो, तो जल्दी से DM मी। और फिलहाल सुनते हैं बुमरो बुमरो फ्रॉम मिशन कश्मीर एट प्रीतीज रिक्वेस्ट राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieta la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: हाय शिवानी.
2: हाय
3: हाय शिवानी, कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो, गाड़ी खरीद ली.
2: हाँ, थैंक यू वेरी मच. आप कौन बोल रहे हैं?
3: शिवानी, कौन सी गाड़ी खरीदी है? मुझे तो अभी बताया. अरे ग्रेट, मुझे बता दो कि शिवानी कितने की पड़ गई तुमको ये
2: समाचार?
3: ग्रेट, माइलेज मुझे बताओगे कितना है?
2: ठीक ठाक है, 13-14 के करीब पड़ जाता है. आप कौन बोल रहे हैं?
3: अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसे चलाने में?
2: चला रही हूँ, काफी दिन हो गए मेरे को. पहले तो मैंने ऐसी ट्राई मारी थी, मुझे
3: अच्छा.
2: टेस्ट ड्राइव में ही पसंद आ गई.
3: ओके शिवानी, आप मेरा थोड़ा सा
2: फेवर.
3: मैं वही बता रहा हूँ शिवानी, आप मुझे नहीं जानती है. अतुल ने मुझे आपका नंबर दिया था. एक्चुअली आप अगर 10 मिनट के लिए ले आए गाड़ी तो ये मैं थोड़ा देख लूंगा.
2: आपको लेनी है क्या?
3: नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लेनी. अब मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा डॉगी है ना.
2: हाँ?
3: इसको ये नई गाड़ियों पे ही करने की आदत है, तो कोई नई गाड़ी मुझे. वन सेकेंड. चुप बैठो, मैं उनसे बात कर रहा हूँ. ज़ोबी, शट अप, मैं बात कर रहा हूँ उनसे. अभी कर लेना. शिवानी, ये 3 दिन से रोके हुए, इसका हुआ नहीं है. नई गाड़ी कोई दिखी नहीं, इसको करना है. आप ले आएंगे वो टायर के पास?
2: नहीं, आपने कुत्ते के लिए खुद गाड़ी खरीद ली ना, खरीद नहीं सकता. मैं सिर पे करवा ले जाके उसको रोका हुआ है.
3: शिवानी, इतनी हेल्प तो कर दो यार, इसका ये कब से रोके हुए. वो ला रही है शिवानी गाड़ी अपनी.
2: आप सिर्फ
3: मेरी बात
2: खर्च के गाड़ी खरीद ले.
3: ये सिर्फ 3. अच्छा, एक टायर पे करेगा शिवानी, एक टायर पे करेगा.
2: सिर पे करवा ले
3: शिवानी.
2: हेलो,
3: अगर आप नहीं आ सकती मैं इसको ले आता हूँ. इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा. अच्छा, मेरी बात
2: कहाँ कहाँ से कुत्ते पाल लेते हैं, खुद के कुत्तों जैसे ना. आपने कुत्ते का इलाज?
3: अच्छा अच्छा अच्छा, शिवानी मेरी बात सुनो. प्लीज फोन मत काटना. शिवानी मेरी बात सुनो.
2: नहीं,
3: बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ शिवानी, मैं बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ. मेरी बात सुन लो प्लीज. अतुल ने मुझे नंबर दिया था, ये तो बताया था कि तुमने नई गाड़ी ली है. मेरे पास कोई कुत्ता नहीं है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. शिवानी, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारा मुर्गा बन गया है. कंग्रेचुलेशन, तुमने नई गाड़ी ली है यार. ज़ूबी शरा, वो गाड़ी ला रही है, टायर पे कर लेना.
2: कुकड़ुकु.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब
3: मिर्ची का।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिंदगी में हम सब ने कभी ना कभी किसी हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में किसी अपने के लिए दुआ जरूर मांगी होगी। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और क्या वो पल याद है जब आपने किसी अपने को हॉस्पिटल में देखा था और एक नर्स, एक टेक्नीशियन या फिर एक हेल्थ केयर वर्कर ने मुस्कुराकर कहा था सब ठीक हो जाएगा। वही लोग होते हैं असली हीरोज जो दिन रात किसी के लिए फर्क लाते हैं। और सोचो अगर एक दिन आप भी किसी के लिए वो हीरो बन सको तो बस एक फोन कॉल या एक क्लिक से ही आपका ये सपना सच हो सकता है। कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज, एट 9082220002, या फिर विजिट कीजिए उनके वेबसाइट को एट aimseducation.edu और डिस्कवर कीजिए उन सारी अपॉर्चुनिटीज को जहां आप भी बन सकते हो एक हेल्थ केयर हीरो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। एंड चलिए, अब वक्त आ चुका है फॉर मी टू से टाटा, बाय बाय, सायोनारा टू यू। लेकिन आप कहीं ना जाइए, क्योंकि थर्सडे की शाम है, बस एक दिन और फिर फ्राइडे जल्द ही शुरू होने वाला है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए, जमे रहिए, टिके रहिए और सुनते रहिए रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।